मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जून सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है मंगल ध्वनि।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डॉ

0: ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से हॉर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है आज का विचार, अवचेतन मन को संस्कारित करें विषय पर। आलेख और वाचक स्वर हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा के।
2: श्रोताओ, वैसे तो मन ही अगर हम संस्कारित कर पाएं तो जीवन की यात्रा ठीक से संभव हो सकती है, क्योंकि मन के लिए कहा गया है, चढ़े मन घोड़े पर कोई चढ़ा की हो तो ऐसा हो। यानी वही अश्वार सफल है जो मन रूपी घोड़े को नियंत्रित करके सवारी कर सके। ये मन बहुत शक्तिशाली होता है। मन में बैठे हुए संकल्प जब जोर पकड़ते हैं तो इंद्रियां स्वयं उसकी दास बनकर उसकी आज्ञा में चलने लगती है और यहीं से मनुष्य का पतन होने लगता है। अष्टावक्र इंद्रियों के व्यवहार को कतई झूठ मानते हैं। वे शरीर और संसार को नकारते हुए अदृश्य आत्मा को सत्य मानने की बात कहते हैं। जब संसार और शरीर ही अपने नहीं तो फिर इंद्रियां और मन हमारा रूप कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये सब तभी दूर हो सकता है जब हम मन की सत्ता को नकार सकें। लेकिन ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मन अधिचेतन मन से संस्कार लेता है और अधिचेतन अचेतन मन से। अतः इसके लिए उल्टी यात्रा आरंभ करनी पड़ेगी। जैसा कि लोक में कहा गया है, मूल महल में ओम गणेशा सोई निज ध्यावो ए, निश्चय करके उल्टा चालो निज पद पाओ ए। यानी हमें मन को संस्कारित करने की बजाय पहले अचेतन मन को शुद्ध करना होगा। अचेतन से फिर अधिचेतन मन शुद्ध होगा और तब शुद्ध हुआ अधिचेतन मन मन को स्वतः ही संस्कारित करता रहेगा। इस प्रकार से हम परम पद मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मन के मते चलते हुए इंद्रियों का आडंबर करते रहने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, संसार में आपका दिखावा लोगों को जरूर प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे क्या फायदा? जो संसार छूट ही जाना है उसमें दिखावा करके हम क्या हासिल कर सकते हैं? केवल क्षणभंगुर मानसिक सुख के लिए। अब समस्या ये आती है कि अचेतन मन को शुद्ध कैसे करें? तो इसके लिए हमें ध्यान योग का सहारा लेना पड़ेगा। हम ध्यान करें और केवल अपने अचेतन मन से उठने वाले भावों के साक्षी होकर देखते रहें तो धीरे धीरे अचेतन मन शुद्ध और प्रकाशित होने लगेगा। यह कुछ कुछ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जैसा ही है, जैसे नींद आने के बाद स्वप्न आरंभ होते हैं और स्वप्न के बाद सुषुप्ति अवस्था आ जाती है तो हम देखते हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ठीक वैसे ही साक्षी भाव में स्थिर होकर हम अचेतन मन को शुद्ध कर सकते हैं। इसके साथ साथ सत्संग और स्वाध्याय को अपनाकर भी हम अचेतन मन को शुद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। ये देखने योग्य बात है, जितना जितना अचेतन मन शुद्ध होगा हमारा अधिचेतन मन उससे अधिक और चेतन मन उससे भी ज़्यादा शुद्ध होकर संसार के कार्यों का निस्वार्थ निर्वाह करेगा। ओम शांति।
1: अवचेतन मन को संस्कारित करें विषय पर अभी आपने सुना आज का विचार। आलेख और वाचक स्वर थे श्री प्रमोद कुमार शर्मा के। हम आकाश

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। कार्यक्रम के आज के अंक में आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 142 से दोहा संख्या 144 की अंतिम चौपाई तक का पाठ। संगीतकार सतीश भाटिया।
1: एपिसोड नंबर

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है और जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:40 पर हमारे जयपुर केंद्र से। सुबह 8:30 पर हमारी इसी सभा में सौरभ कार्यक्रम में आप सुनेंगे कहानी जहां रिश्ते अमीर थे शीर्षक पर कहानीकार श्री नेमीचंद बारासा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा तानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार की जन शिक्षण संस्थान योजना पर विकास यात्रा, आलेख और प्रस्तुति श्रीमती बरखा तानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का। और सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

दिन के 11 बजे आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम, और दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए योग, किशोर होती बालिकाओं से संवाद जरूरी, AI से सावधान, सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, स्वयं सहायता समूह योजना पर आधारित विशेष कार्यक्रम कदम बढ़ाए चलो, और कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता लैंगिक समानता और स्वयं सहायता समूह विषय पर श्रीमती पूजा देवी से श्रीमती मधु शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति श्रीमती बरखा तानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा फेफड़ों और हृदय स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम। लघु जानकारी के विषय रहेंगे स्वस्थ संवाद, बेहतर सभ्यता, अल नीनो ला नीनो, यूनिसेफ, मानसिक स्वास्थ्य है जरूरी। और शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे बुआई और खाद डालने के आधुनिक यंत्र, तेज गर्मी व धूप में शारीरिक श्रम से बचें, किसान सम्मान निधि, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा।

रात्रि 10 बजे, माफ कीजिए, रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे मुंशी खान का सितार वादन राग जय जयवंती पर।

ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें।

0: बचाओ अभियान, 1 जून से 30 जून 2026, पर जानकारी दे रहे हैं श्री बजरंग सारस्वत।
1: किसान भैया राम राम। खेती री बाता कार्यक्रम में आज बात करा खेत बचाओ अभियान 1 जून सु लेर 30 जून 2026 ताई वो अभियान चल रियो है, केंद्र सरकार इरो आयोजन कर रही है, इरे बारे में। तो सा खेत बचाओ अभियान केंद्र सरकार शुरू करियोड़ो वो अभियान है, वो 1 जून सु लेर 30 जून ताई अपारे पूरे देश में चलेला। अपारे कृषि मंत्री खुद मध्य प्रदेश रे एक जिले रायसेन सु इरो शुभारंभ कर चुकिया है। उद्देश्य एक ही है, खेत ने केमिकल रे कहर सु किया बचायो जावे, इन बारे में आम जनता ने किसान भाया ने चेतना जगाई जावे। तो अपर देश री माटी खराब नहीं होवे, खेती बर्बाद नहीं होवे, धरती बर्बाद नहीं होवे, खेती में लागत है बा घनी नहीं हुए बल्कि कम हुए, ई बात ने धार विचार ओ अभियान धरती माता सारू शुरू करी जो है। अबे आप पूछ सको कि भाई इन अभियान में काई होवेला, तो होसी ओ कि 1600 सु ज्यादा टीमा बनाई जी है। हर टीम में कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र रा विशेषज्ञ, ICAR रा अधिकारी इन टीम में शामिल है। ए टीमा 30 जून ताई गांव गांव जावेला, सबरी तारीख तय करोड़ी है कि किसी टेम किसे दिन किसे गांव में पुगेला। अबे वैज्ञानिक खुद खेत ताई जावेला, अबे अपने खेतरी बाढ़ माथे खेतरी सीमो माथे अपने सलाह मिलेला, खुद कृषि विभाग अपा ताई पुगेला। आ किसान भया सारू बहुत बड़ी राहत री बात है। पहलोगा ए जकी टीमा है ए 8 बाता बतावेला। पहली बात बतावेला संतुलित उर्वरक उपयोग। अपारा किसान भाई सोचे है कि अपा जितनी बत्ती खाद गाला बीतती ही घनी फसल हुई, पण शाणा लोग बतावे है कि घनी खाद सु धरती रो स्वास्थ्य बिगड़े है, माटी रो स्वास्थ्य बिगड़े है और लागत में भी बढ़ोतरी हो जावे। दूजी बात है माटी रो परीक्षण यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड। कार्ड में लिखियोड़ो आवे है कि खेत में जिंक कम है या पोटास बत्ती है। आप रो कार्ड जे नहीं बनेड़ो है तो ए टीमा अभियान चलार हाथों हाथ कार्ड भी बनावेला। तीजी बात है प्राकृतिक खेती यानी कि नीम गौमूत्र जीवामृत आ सब ने खेती में बदेपो देवणो। चौथी बात फसल रो चयन यानी कम पानी में बाजरो मोठ लेवा यानी कम सिंचाई में आपा काई काई फसला ले सका। पांचवी बात है जल संरक्षण, बूंद बूंद सिंचाई फव्वारा सिंचाई। छठो है हरी खाद यानी ढेंचा ग्वार आपा खेत में मिलावा तो हरी खाद खेतरी माटी में मिले। सातवीं बात है कम बिरखा में आपा वैकल्पिक खेती किया करा। और आठवीं है नकली खाद बीज और पेस्टिसाइड री पहचान आपा किया करा। बाजार में नकली माल आवे किसान भाई ठगी जाए, दाम जका है अबे असली लागे पर चीज है जे कि नकली मिले। अबे वैज्ञानिक खुद बतावेला कि असली नकली रो आपा भेद किया जाना। इरे सागे सागे किसान क्रेडिट कार्ड है, PM किसान है, फसल बीमा, दलहन तिलहन मिशन है, मिनी बीज किट है, आ सब योजना रो लाभ भी ए टीमा आपा ने दिलावेला। अबे एक नई चीज आई है फार्म्स ऐप। ओ जको ऐप है वो माटी रे स्वास्थ्य और फसल री जरूरत रे मुजाब सटीक सलाह देवेला। तकनीक रो उपयोग करता थका धरती माता ने बचावता थका आपा माटी रो स्वास्थ्य है भी ने बनायो राखता थका आमदनी क्या बढ़ावा, इरा गुर आपा ने इन अभियान में बताया जासी। अपारे बीकानेर जिले में भी टीमें आ रही है, जिया के लूनकरनसर में, नोखा में, कोलायत, डूंगरगढ़, हर ब्लॉक में तारीखा तय हो गई है। ग्राम सेवक जी सु आप ध्यान कर लो कि आपरे गांव में, आपरे क्षेत्र में, आपरी पंचायत में टीम कद आवेला। पहलो का ओ ध्यान रखनो है कि ओ अभियान 30 जून ताई पहले चरण में है। ओ अभियान बाद में भी चलेला पण अबार मौको है। आपा पेलड़िया रे मायने माटी की जांच करवावा, फेरोमोन ट्रैप लगवावा, IPM जको है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ओ आपा सीख लेवा, तो अबे रसायन है जका बाद में पहली आपा देशी वैज्ञानिक तरीका अपनावा।
0: खेत बचाओ अभियान विषय पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी दे रहे थे श्री बजरंग सारस्वत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, संवाद बहुत जरूरी है। हम जो आपसे रेडियो के माध्यम से कनेक्ट होते हैं ना, यह भी संवाद का ही एक जरिया है। और जो आप हमसे कनेक्ट होते हैं आपके ईमेल के द्वारा, आपके मैसेजेस के द्वारा, आपके पत्रों के द्वारा, यह एक संवाद ही तो है। उस संवाद से हमें क्या फ़ायदा होता है या आपको क्या फ़ायदा होता है? आपके और हमारे बीच, श्रोताओं और रेडियो के बीच जो ये संवाद होता है, इससे एक बात तो यह कि जानकारियाँ साझा होती है, एंटरटेनमेंट साझा होता है और सूचनाएं तुरंत मिलती हैं। सूचनाओं का बहुत अत्यधिक फ़ायदा होता है। टाइम पर अगर हमें कोई सूचना मिल जाती है तो हम आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए सावधान, सतर्क और सचेत हो जाते हैं। दूसरा फायदा कि जब हमारे तमाम श्रोतागण जो इस पूरी धरती के कोने में न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से हमसे कनेक्टेड हैं, वे अपने ईमेल्स के द्वारा हमें प्रोग्राम को अपग्रेड करने के लिए और प्रोग्राम में किसी कमी को ऑब्जर्व करके उसे सुधारने के लिए संवाद करते हैं। और भी ऐसे संवाद स्थापित करते हैं श्रोतागण हमसे कि हमें समय समय पर किन चीज़ों पर काम करना चाहिए या प्रोग्राम में क्या एडिशन डिलीशन होना चाहिए। संवाद जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संवाद परिवार में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संवाद परिवार में बच्चों और माता पिता के बीच में महत्वपूर्ण है। संवाद भाई भाई और भाई बहन के बीच में भी महत्वपूर्ण है। संवाद आपके पड़ोसियों से महत्वपूर्ण है। संवाद आपके बैचमेट, क्लासमेट और आपके फ्रेंड से भी जरूरी है। कहने का मतलब ये कि हमें वार्तालाप करना चाहिए, हमें बातचीत करना चाहिए। इस पूरी धरती पर जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं, इंसान को मिलाकर उसमें सबसे श्रेष्ठ बुद्धि में जो है वह इंसान है। और संवाद करने की जो बेहतर क्षमता कुदरत ने इंसान को दी है वह किसी भी अन्य प्राणी में नहीं है। हमारे पास भाषा है, हम अपनी भाषा के दम पर अपनी संवेदनाओं, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन जानवरों के बीच में, पशु पक्षियों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, इस एनवायरनमेंट के बीच में संवाद के लिए ऐसी कोई स्पष्ट और उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। संवाद का एक पहलू यह भी है कि आजकल घर घर में जो मोबाइल का कल्चर चल पड़ा है, इसने लोगों को संवाद शून्य कर दिया है। आपस में घर के एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग आपस में बातचीत कम करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें मोबाइल यूज करना होता है। यह संवाद शून्यता इंसान के लिए घातक है। ऐसा व्यक्ति अवसादग्रस्त हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अकेलेपन से ग्रसित हो सकता है। जो व्यक्ति दुख शेयर न कर सके, जो व्यक्ति सुख शेयर न कर सके, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा अकेला रह जाता है। तो हमें संवाद स्थापित करने की कोशिश हमेशा करना चाहिए, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पर हों, चाहे हम अपने घर पर हों, चाहे हम अपने पब्लिक प्लेस पे भी क्यों न हों। अगर हमें कोई बात अच्छी लगती तो हमें प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए, और अगर हमें बात कोई गंदी लगती तो भी प्रतिक्रिया अवश्य देना चाहिए। संवाद का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। संवाद शून्यता हमें अवसाद जैसी मानसिक बीमारी से भी ग्रसित कर सकती है। और इस पूरे विश्वभर में आत्महत्याओं के पीछे जो एक मूल कारण माना जाता है वह है संवाद शून्यता। ऐसी ही संवाद शून्यता को या संवाद के इस खासे महत्व को जानकर पूरे विश्वभर में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संवाद स्थापित करे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सांस्कृतिक कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है उसको साझा करें, एक दूसरे के बीच संवाद स्थापित करके कई बार ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, विश्वास से संबंधित इश्यूज हो जाते हैं, उन संकटों को दूर करने के लिए भी संवाद स्थापित करना चाहिए। इसके महत्व को जानते हुए प्रतिवर्ष 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय

दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाए जाने के प्रति जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है दुनिया भर में तेजी से बढ़ते सांस्कृतिक संघर्षों, अविश्वास और संकटों के बीच अंतर सांस्कृतिक समझ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है। संवाद से ही सहयोग मिलता है, संवाद से ही सांस्कृतिक संघर्षों को कम किया जा सकता है और संवाद से ही जो विश्वास ट्रस्ट का जो इश्यूज है जो कई बार हो जाते हैं उनको खत्म किया जा सकता है और यहाँ तक कि ट्रस्ट को बिल्डअप करने में भी संवाद का खासा योगदान होता है। इस दिवस को मनाए जाने के प्रति जो रुझान थे वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 जून 2024 को चीन द्वारा प्रस्तावित संकल्प को अपनाने के बाद इस दिवस की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 2001 को सभ्यताओं के बीच संवाद का संयुक्त राष्ट्र वर्ष घोषित किया था। इसके बाद यूनेस्को के सहयोग से वैश्विक स्तर पर संवाद और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया और यह संवाद का ही पहलू है, संवाद का ही आकर्षण है जिसकी वजह से पूरे विश्व भर से हमारी भारत भूमि को लोग विजिट करने आते हैं, यहाँ की कल्चरल इम्पोर्टेंस को जानते हैं, यहाँ के पारिवारिक सामाजिक ताने बाने को जानते हैं। श्रोताओं, हम एक अपील भी आपसे करते हैं इस दिवस के माध्यम से, 10 जून को जो मनाया जाने वाला दिवस है इसके माध्यम से मोबाइल को दूर करें और परिवारजनों के बीच संवाद स्थापित करें ताकि कभी भी आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में अविश्वास वाली स्थिति उत्पन्न न हो और अगर आप संवाद करेंगे, चाहे आप अपने दुख साझा करते हैं, चाहे अपने सुख साझा करते हैं, सुख साझा करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए कि सुख दुगना हो जाता है और दुख साझा करते हैं तो दुख आधा हो जाता है। अपनी इस कल्चरल इम्पोर्टेंस को बनाए रखें, परिवारजनों के बीच में संवाद स्थापित करें और अब हम आपसे इस संवाद को देते हैं विराम, सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, हम जमीन में बीज बोते हैं, उस बीज से पौधा और पेड़ बनते हैं। पेड़ पौधे हमें फल फ्रूट सब्जियां अनाज देते हैं और उससे हम मनुष्य का पेट भरता है। जमीन इतनी उपजाऊ है कि आप कोई सा भी बीज बो दो उसमें से पौधा निकलना तय है और उस पौधे से फ्रूट बनना भी तय है। हमारी मदर नेचर ने हमें निशुल्क फूड, निशुल्क एयर और निशुल्क वाटर ये उपलब्ध कराए हैं, लेकिन जैसा कि मनुष्य की प्रकृति होती है, लालच तो मन में आए बगैर रहता नहीं है। ये जो मन के विकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, लालच, लोभ, मोह, ये मनुष्य के मन में आए बगैर रहते नहीं है और मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इन पर नियंत्रण पा नहीं सकता। इसलिए वह अपने इस लोभ और लालच को डे बाय डे बढ़ाता रहता है और क्या करता है, दोहन करता है इस मदर नेचर का, दोहन करता है यहाँ तक कि मानव बुद्धि का, दोहन करता है मानव श्रम का। किसी को भी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि मन में विकार है लालच और लोभ का। इसकी वजह से वह झूठ बोलता है, इस लालच की वजह से वह धोखा करता है, सिर्फ दूसरे लोगों से नहीं अपने घर वालों से भी, घर के सदस्यों से भी धोखा कर लेता है। क्यों? क्योंकि मन पे क्या छाया हुआ है, लालच और लोभ। यह लालच और लोभ इस कदर है कि अपने मुनाफे के लिए, अपने 10 रुपए के मुनाफे के लिए अगर किसी का 1000 रुपए का नुकसान भी हो तो वह करने के लिए भी तैयार है आज मानव। यह लालच इस कदर तक बढ़ गया है कि हमें जो प्राण देता है, हमें जो ऊर्जा देता है हमारा फूड, उस फूड में इतने भयंकर लेवल पर अडल्ट्रेशन होने लगे हैं, मिलावट होने लगी है कि अब फूड अपने वास्तविक रूप में ही नहीं रहा। आर्टिफिशियल चीज़ों से, आर्टिफिशियल कलर से, आर्टिफिशियल फ्लेवर से, आर्टिफिशियल स्वीटनर से आर्टिफिशियल चीज़ों को भोजन की शक्ल देकर आपकी थाली में परोस दिया जाता है और वह फूड आप मज़े से खाते हैं। एक ऐसा फूड जो आपको कैंसर, बीपी, थायराइड जैसी लाइलाज हार्मोनल बीमारियां भी देता है। जीवन के शुरुआती दौर में जब इस तरह का एडल्ट्रेटेड फूड जो

डुप्लीकेट फूड है वो खा रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन उम्र ढलने के साथ बीमारियां हमें घेर लेती है और लाइलाज बीमारियां जिनकी दवाइयां हमें जीवन पर्यंत खानी होती है। इसके पीछे खास वजह है लालच, और यही लालच लोगों को मिलावट करने के लिए प्रेरित करता है। जितने भी मसाले आज बाजारों में बिक रहे हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ आज बाजारों में बिक रहे हैं, वे अपने वास्तविक स्वरूप में तो है ही नहीं। उन्हें इस तरीके से आर्टिफिशियल एडिटिव्स के द्वारा शक्ल, सूरत और स्वाद दिया जाता है कि हम वास्तविक और डुप्लीकेट फूड के बीच में फ़र्क ही पता नहीं कर पाते, हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में क्या है, लालच, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। इस प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, इस थॉट की वजह से आज हमने हमारे खेतों को बंजर कर दिया है। दुनिया भर का पेस्टिसाइड्स हम खेतों में डालते हैं ताकि फसलों में बीमारियां ना हों, कीड़े ना लगें, और दुनिया भर की यूरिया और ऐसी दवाइयां डालते हैं जिससे कि उपज को डबल किया जा सके, दोगुना तिगुना किया जा सके। जहां एक बीघा खेत से 10 बोरी गेहूं होता है, वहां 30 बोरी गेहूं तक का उत्पादन किया जा रहा है दवाइयों के माध्यम से, कीटनाशक के माध्यम से। सब्जियों का तो इतना बुरा हाल है कि रात को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और सुबह वो पक कर तैयार हो जाती है। फ्रूट्स तोड़े तो कच्चे जाते हैं, लेकिन एक दिन में ही उनको, एक दिन नहीं सिर्फ एक घंटे में ही उनको केमिकल के उपयोग के द्वारा पका दिया जाता है। इस वजह से आज हमारे खेत बंजर होते चले जा रहे हैं। अत्यधिक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से जो फसल पैदा हो रही है, उस फसल में ऐसे कार्सिनोजेनिक तत्व पाए जा रहे हैं जो कैंसर का कारण बन रहे हैं। और जैसा कि आप तमाम श्रोतागण जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और दवाइयों का सेवन जीवन पर्यंत करना होता है। इस चीज़ को देखते हुए, इन बातों को देखते हुए 1 जून से 30 जून तक पूरे देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अभियान या कोई भी दिवस बनाने के प्रति आम जन में जागरूकता बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता है, तो इस अभियान के तहत भी यह प्रयास किया जा रहा है कि आम जन को जागरूक किया जाए कि खेतों को बचाया जाए, खेतों को बचाया जाए पेस्टिसाइड से, खेतों को बचाया जाए उन दवाइयों, उन रसायनों से जो फसलों के उत्पादन को 2 गुना 3 गुना तक बढ़ा देते हैं, या फिर फसलों को एक दिन में या एक घंटे में पका देते हैं। आने वाले समय में अगर इसी तरीके से पेस्टिसाइड्स और रसायनों का उपयोग होता रहा तो ज़मीनों की उत्पादन क्षमता कम ही नहीं, शून्य हो जाएगी। ऐसे में हमारी एक्टिविटीज़ या हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे प्राण को चलाने के लिए जो ऊर्जा हमें फूड से मिलती है, वो फूड ही उपलब्ध नहीं रहेगा। और जब फूड उपलब्ध नहीं रहेगा तो इस धरती पर मानव जीवन का होना तो माना ही नहीं जा सकता, मानव जीवन इस धरती पर खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें आज ही यह संकल्प करना होगा, आज ही यह प्रण लेना होगा कि हम खेतों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल या खेतों में केमिकल्स का इस्तेमाल, रसायनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि हमारी ज़मीन बंजर ना हो और ज़मीन की जो उपज क्षमता है वह बराबर बनी रहे। ऐसा करके हम हमारे खेतों को बचा सकते हैं और खेतों के संरक्षण के साथ आने वाली संततियों के लिए फूड की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं, और हम सुनिश्चित करते हैं कार्यक्रम में जानकारियों के साथ एंटरटेनमेंट को। तो आइए लुत्फ लेते हैं कार्यक्रम के इस अगले गीत का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है हीरो।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम 1942 ए लव स्टोरी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है लकी, स्वर है अदनान सामी और लता मंगेशकर के।

मोहरा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है यस बॉस, स्वर है अभिजीत और अलका याग्निक के।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमला

0: किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन

0: द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस

0: अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा।

0: रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 25,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
4: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture,

जहाँ रिश्ते अमीर थे, आज रमेश बेहद उदास था। वह न तो आज रिक्शा चलाने गया और न ही खाना उसने रोज की भूख के मुताबिक खाया। उसके भीतर अंतर्द्वंद चल रहा था कि आखिर साहब जी से उसे बिटिया आकांक्षा की शादी में नहीं बुलाने की कैसे भूल हो गई। यह भूल हुई है या फिर मुझ गरीब को उन्होंने शादी का निमंत्रण भेजने के लायक ही नहीं समझा। उसके भीतर यही अंतर्द्वंद चल रहा था कि पत्नी रीमा आ गई और उसने पति की उदासी का कारण पूछा। पत्नी को बताने से पहले ही उसकी आंखें नम हो गई। रीमा मन ही मन सोचने लगी कि जो आदमी कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी उफ तक नहीं करता, आज ऐसी क्या बात हो गई जो पलकें भीग गई। बार बार पूछने पर रमेश ने अपनी मनोव्यथा बताई। पत्नी गुस्से में तुरंत बोली, ये सब अमीर ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तो वे लोग। नहीं नहीं हमारे साहब उनमें से नहीं, रमेश ने बात को संभालने की कोशिश

की। क्या उनमें से नहीं, रीमा बोली। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहते हुए वह भीतर चाय बनाने लगी। और दुख के समय प्रकाश साहब के परिवार का साथ देने के क्षणों को याद करने लगी। कैसे उनकी पत्नी की जुड़वा संतान बिटिया आकांक्षा, बेटा लक्षित के समय रमेश का परिवार अस्पताल से लेकर घर में शुश्रूषा में दिन रात लगा रहा। ऐसे और कई भी अवसर उसे कुंठित कर रहे थे, लेकिन उसे यह भी भान था कि प्रकाश साहब व मैम साहब सुनिधि भी रमेश व रीमा को बहुत प्यार करते हैं। उधर रमेश भी प्रकाश साहब से जुड़ी पुरानी यादों में खोया था, और उसे वह रात भी याद आई जब प्रकाश साहब तेज बारिश आंधी में रात को फंस गए थे और मेम साहब जोर जोर से रोने लगी थी। दोनों बच्चे साल डेढ़ साल के रहे होंगे। जब देर रात तक साहब नहीं लौटे तो रमेश ने हिम्मत जुटाई और उन्हें रिक्शे पर ही ढूंढने निकल गया। पत्नी रीमा और मेम साहब की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि शहर में चारों ओर पानी ही पानी और अंधेरा पसरा था। कहते हैं कि तजुर्बा किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत मायने रखता है। रमेश ने शहर की हर सड़क, गड्ढे, गली, बस्ती को अपने मजबूत पैरों से नापा हुआ था। वह आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पहुंचा जहां एक व्यक्ति किसी दुकान के शटर के आश्रय में सिर झुकाए निढाल बैठा था। थोड़ी थोड़ी बारिश अभी भी हो रही थी और रात के लगभग 2 बज चुके, परंतु प्रकाश साहब उससे आत्मीय लगाव के कारण उसे गले लगे बिना नहीं रह सके। रमेश उन्हें रिक्शे पर बैठाकर सुरक्षित घर ले रहा है। साहब को देखते ही पत्नी सुनिधि की आंखें छलक पड़ी और रमेश की पत्नी की भी, क्योंकि इस परिवार का आपस में गहरा रिश्ता था। रमेश इन्हीं ख्यालों में खोया था कि पत्नी रीमा चाय लेकर आ गई। उसने पति के उदास चेहरे को देखकर ढाढ़स बंधाया। बेटी की शादी एक बहुत बड़ी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। शायद व्यस्तता तनाव में कार्ड देना भूल गए होंगे। आप तो अपना फर्ज पूरा कीजिए, हमारी बिटिया आकांक्षा की शादी का नेक देकर आइए, रमेश बोला। रीमा, बिन बुलाए मेहमान की तरह जाऊंगा तो अच्छा लगूंगा क्या, रीमा बोली। तुम क्या मेहमान हो जो प्रकाश साहब तुम्हें बुलाएंगे? तुम्हें याद नहीं जब मेम साहब का भाई रक्षाबंधन के दिन घर नहीं आया तो वह कितनी उदास थी और शाम होते होते रोने लगी थी? हाँ याद है, रमेश बोला। उस दिन तुम मुझे लेने आए थे और मेम साहब को रोता देखकर तुमने अपनी कलाई आगे कर दी थी। हाँ हाँ सब याद है रीमा, तो फिर आकांक्षा बिटिया तुम्हारी क्या हुई, रीमा बोली। रीमा का इतना कहना था कि रमेश अपने स्वाभिमान को हराते हुए साहब के घर जाने को अधीर हो उठा। उसने जैसे ही रिक्शा उठाया तो पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, रमेश जी क्या शादी में नहीं चलना, या भात भरने के डर से आए नहीं? यह आवाज़ प्रकाश साहब की थी, क्योंकि रमेश के अंतःकरण में यह आवाज़ गूंजती रही थी। उसने पीछे देखा तो वाकई में प्रकाश साहब कार के पास मुस्कुराते खड़े थे और बेटा लक्षित भी साथ आया था। रमेश संकोच से उभर पाता उससे पहले ही प्रकाश साहब बोले, अब जल्दी चलो, मेरी पत्नी यानी तुम्हारी बहन सुनिधि तुम्हारी राह देख रही हैं, और तुम्हारा कार्ड टेबल पर ही पड़े रहने पर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया है। साहब के इस आत्मीय और अधिकारपूर्ण स्वर को सुन रमेश को जैसे धरती स्वर्ग एक हो गया। उसे गरीबी में जन्म लेने पर लेस मात्र भी मलाल नहीं था, बल्कि वह उसी क्षण परमात्मा का आभार व्यक्त कर रहा था। लक्षित बोला, रीमा आंटी को साथ नहीं लेंगे? रमेश लक्षित का चेहरा देखने लगा, मानो बचपन की उसकी सैकड़ों शरारतों का प्रतिफल उसने इसी एक वाक्य में चुका दिया हो। जब दोनों परिवार कार में बैठे तो मानो उस दिन की स्वर्णिम संध्या अमीरी गरीबी की दूरी को मानवीय रिश्तों की बानगी से उसे पाट रही थी। शादी स्थल पर पहुंचते ही सुनिधि ने रमेश रीमा को देखा तो उसके चेहरे का तेज दोगुना हो गया, लेकिन रीमा ने मेम साहब की नम

आंखों को भी पढ़ लिया था जो मानो आज इस भूल का प्रायश्चित कर रही थी। कुछ ऐसा ही आज शादी के दिन कुछ घंटों पहले घटित हुआ, जब भीड़ भाड़ में सुनिधि की नजरें कुछ ऐसा ही आज शादी के दिन कुछ घंटों पहले घटित हुआ जब भीड़ भाड़ में भी सुनिधि की नज़र टेबल पर रखे शादी के कार्ड पर पड़ गई, जिसमें श्रीमान रमेश कुमार लिखा था। रमेश कुमार, यहाँ कुमार का संबोधन आदर सत्कार से सरोबार था, सराबोर था। वह तुरंत प्रकाश को खोजने लगी और कार्ड दिखाया। प्रकाश साहब ने भी तुरंत समझ लिया और लक्षित को गाड़ी निकालने को कहा। रास्ते में वह अपनी इस बड़ी भूल के बारे में सोच रहे थे कि अगर सुनिधि ने कार्ड नहीं देखा होता तो एक बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि उनके परिवार पर रमेश के परिवार के अनेक भावनात्मक ऋण थे। सुनिधि ने रमेश रीमा से शादी वाले कपड़े पहनने को कहा। रमेश रीमा सोच रहे थे कि कपड़े कहाँ से लाएं। इतने में आकांक्षा बोली, आंटी, मम्मी इस मामले में बहुत स्मार्ट है, उन्होंने हमारे दर्जी से आपका नाप लेकर दो दो पोशाकें बनवाई हैं। रमेश बोला, बिटिया दो दो पोशाकें क्यों, एक ही काफ़ी थी। लक्षित ने शरारत भरे अंदाज में सवाल किया, एक पोशाक पहनकर आकांक्षा के दूल्हे का स्वागत नहीं करेगी। रीमा मुस्कुराई, और दूसरी पोशाक। आकांक्षा बोली, रीमा आंटी आपकी गुड़िया को सुबह विदा नहीं करेंगी। यह कहते हुए उसका गला भर आया। रीमा ने आपकी गुड़िया शब्द सुनते ही आकांक्षा को गले लगा लिया। जब रमेश रीमा नई पोशाक में आई तो सुनिधि उनके नए स्वरूप को देखते ही रह गई। तभी किसी ने आवाज़ दी, बारात आ गई हैं। परिवार के लोग साफा पहने फूलों की मालाएं लिए स्वागत को खड़े थे। वहीं प्रकाश साहब के बगल में खड़ा रमेश कुमार दोनों परिवारों के अगैध प्रेम की गवाही दे रहा था। साफा पहनकर वह मानो गर्दन सीधी रखकर आकाश से नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा था। और क्यों न करे, क्योंकि कहते हैं न कि समदृष्टि जितनी सुदृढ़ होती है तब परिवेश अपनी प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद निष्प्रभ पड़ जाता है। सुबह बिटिया आकांक्षा की विदाई के समय उसे गले लगाते समय सुनिधि व रीमा दोनों की आंखों से धारा प्रवाह आंसू छलक रहे थे। और कई बारातियों के लिए यह अबूझ पहली थी कि दुल्हन की माँ कौन है, और रिश्ते की यह अस्पष्टता लाजमी भी थी, क्योंकि आकांक्षा के जन्म से लेकर उसके बालिग होने तक रीमा ने भी अपने निस्वार्थ स्नेह, त्याग और ममत्व से अब उसके जीवन में संस्कारों के ऐसे बीज बोए थे कि संपन्न परिवेश में पली बड़ी होने के बावजूद आकांक्षा रिश्तों, व्यवहार और मानवीय संवेदनाओं से हमेशा जमीन से जुड़ी रही। बिटिया आकांक्षा की विदाई के समय मानो ईश्वर भी साक्षी भाव से यह गवाह दे रहे थे कि आज यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि मानवीयता और उसमें निहित जीवन मूल्यों की जीत थी।

0: सौरभ कार्यक्रम में अभी आपने सुनी कहानीकार श्री नेमीचंद बारासा की कहानी, जहां रिश्ते अमीर थे शीर्षक पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह

0: 10 बजे से शाम 6 बजे तक
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

श्रोताओं, भारत भूमि पर बसते हैं हम, और यहाँ के संस्कार संस्कृति हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। ऐसी तेज धूप में अपनी छत पर पक्षियों के लिए पीने के पानी का प्रबंध जरूर कीजिए, और जब बारिशें शुरू हो जाए तो वर्षा जल का भंडारण जरूर करें, क्योंकि हम बसते हैं थार के रेगिस्तान में।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार की जन शिक्षण संस्थान योजना पर आधारित कार्यक्रम विकास यात्रा। आलेख और प्रस्तुति श्रीमती बरखा तानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: आजादी के अमृत महोत्सव में प्रस्तुत है भारत के हर क्षेत्र में बढ़ते कदमों पर आधारित विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित हमारा कार्यक्रम विकास यात्रा।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। देश के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है कि युवाओं को उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जन शिक्षण संस्थान अर्थात JSS योजना संचालित की जा रही है। यह योजना उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो कि किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके हैं। जन शिक्षण संस्थान योजना का मुख्य उद्देश्य गैर साक्षर, नव साक्षर, अल्प शिक्षित तथा विद्यालय छोड़ चुके युवाओं और वयस्कों को रोजगार परक कौशल प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसका लक्ष्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना भी है। जन

0: संस्थानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं। किसी क्षेत्र में सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प या खाद्य प्रसंस्करण की अधिक संभावना है तो वहाँ उसी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में कंप्यूटर, डिजिटल साक्षरता, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस तथा अन्य आधुनिक कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना प्रशिक्षण को लोगों के द्वार तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत गांवों, कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति बिना किसी बड़ी लागत के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष जोर दिया जाता है ताकि प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पूरा होते ही रोजगार या स्वरोजगार से जुड़ सके। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी जन शिक्षण संस्थान योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी कल्चर, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं का रोजगार स्थापित कर रही हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है बल्कि परिवार और समाज में उनकी भागीदारी और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, 2047 के विकसित भारत के सपने में जन शिक्षण संस्थान योजना की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह योजना युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाती है और उद्यमिता को भी बढ़ावा देती है। प्रशिक्षित व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। डिजिटल युग में यह योजना डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का भी कार्य कर रही है। कंप्यूटर प्रशिक्षण हो, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग, डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स जैसे विषयों पर प्रशिक्षण देकर लोगों को नई अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। इसी क्रम में जन शिक्षण संस्थान योजना के क्रियान्वयन और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में बातचीत करी हमारे सहयोगी महेश उपाध्याय ने जन शिक्षण संस्थान बीकानेर के निदेशक श्री ओम प्रकाश सुथार से और साथ ही कुछ लाभार्थियों से। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: मेरा नाम सुमन देवी है। मैंने जन शिक्षण संस्थान से पार्लर कोर्स किया है रोशनी देवी से, और मैंने 17 कवैटे में अपना पार्लर की ओपनिंग कर ली है। आज मेरी फ्रेंड मनीषा ने पार्लर खुद का पार्लर किया है, इससे हमें बहुत खुशी है। हम दोनों ने जन शिक्षण संस्थान से पार्लर का कोर्स किया था, आज खुद पैरों पे खड़े हैं।
2: मेरा नाम मनीषा है। मैंने जन शिक्षण संस्थान से सेंटर के अंदर काम सीखा ब्यूटी पार्लर का। आज मैंने खुद का किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने खुद का किया है। कुछ पैसे घर वालों के लगे, कुछ बैंक से लिए हैं, तो मैं आज खुद का कमा रही हूँ।
3: मेरा नाम प्रीति सरस्वत है और मैं सिलाई सेंटर में सिलाई करूँ। JSS की तरफ मैं सिलाई सीखी है और मेरा मैडम नाम सुमन है और आज मैं 5,000 रुपये दिन का कमाने वाला लेडीज हूँ।
4: मेरा नाम मंजू सुतार है। मैंने जन शिक्षण संस्थान के द्वारा ये सिलाई का काम सीखा है और मैं ये सिलाई अच्छे से तरीके से कर लेती हूँ।
5: मेरा नाम जयश्री शर्मा है। मैंने जन शिक्षण संस्थान बीकानेर से पेंटिंग का काम सीखा है, जिसमें मैंने ये सैंपल तैयार किए हैं और इसमें सिपोरी, टाई एंड डाई और बंदेज, चुनरी, लेरिया आदि किए हैं, और मुझे भरोसा है कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकती हूँ।
6: नमस्कार, मेरा नाम सुमन सुतार है और मैं नापास्तर से रहने वाली हूँ। मैं जन शिक्षण संस्थान बीकानेर की संदर्भ व्यक्ति हूँ और मैंने नापासर में कुछ ट्रेंड्स के सेंटर चलाए हैं, जिसमें कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग, ड्रेस मेकिंग का ऐसे कोर्स चलाए हैं। तो मैंने यहाँ के लोग पहले एक्चुअल में सब जैसे पापड़ बड़ी इस तरह का काम करते थे, तो मैंने भी सर्व करा कि हाँ लोग अपने स्तर पर अपना खुद का भी काम कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह अलग अलग ब्रांड्स के सेंटर चलाए, तो जिसमें अभी जो हमने जिन लोगों को सिखाया उसमें से 80% लोग अपना काम करते हैं, स्टिचिंग का या एम्ब्रॉयडरी का कुछ ना कुछ। और मैं चाहती हूँ कि जिस अकॉर्डिंग भारत के अपने प्रधानमंत्री जी का सपना है, और कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए जिससे कि वो कुछ लर्निंग कर सके। और मैंने भी उस अकॉर्डिंग अपने घर पर एक छोटा सा सेटअप लगाया, जिसमें हमने ये पिको की इंटरलॉक की मशीन खरीदी है और हमसे ही सीखे हुए लोगों को हमने थोड़ा बहुत काम भी दिया है स्टिचिंग का, जैसे ये, और हम इस तरह के कुर्ते वगैरह रेडी करवाते हैं। हम अलग अलग कंपनी से ऑर्डर लेके और इस तरह के कुर्ते वगैरह रेडी करवाते हैं, जिससे कि इन लोगों को भी काम मिल जाए।
7: ये थी कौशल विकास की सफल कहानियाँ। देश के युवा

0: जन शिक्षण संस्थान बीकानेर के निदेशक श्री ओम प्रकाश सुथार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा।
1: जन शिक्षण संस्थान द्वारा ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए उनके ही परिवेश में रहकर उनकी स्थानीय परिस्थितियों की अनुकूलता के साथ और उनकी रुचि के साथ हम उन्हें व्यावसायिक कौशल के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ जीवन कौशल शिक्षा के भी हम उनके साथ में कार्य व्यवहार रखते हैं। बहुत सी एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं जिससे वो हाथ का काम तो सीखें ही लेकिन उस हाथ के काम को अपने विकास और समाज के विकास में कैसे उपयोग में ले सके उसके लिए वो एक प्रकार से तैयार हो सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो एक प्रकार से कर्मठता के और निरंतरता के एक प्रकार से आदर्श पुरुष हैं उनकी भावना के अनुसार ही जन शिक्षण संस्थान भी समाज को आत्मनिर्भर आत्मकुशल बनाने के लिए कार्य कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमें अपने काम करने के तरीकों से अपनी सक्रियता से निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं कि हमें किसी के पास काम मांगने जाने की जगह हम खुद काम देने वाले बने। जन शिक्षण संस्थान द्वारा एक प्रकार से हर वर्ष एक वार्षिक कार्य योजना बनाई जाती है। मंत्रालय द्वारा हर वर्ष के लिए एक वार्षिक कार्य योजना बनती है जिसमें मंत्रालय द्वारा MES के और NFT के कुछ कोर्स जो यूनिवर्सिटी में जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो चलते हैं कोर्स लगभग उन्हीं कोर्सों पर आधारित जो पाठ्यक्रम है वे हम जन शिक्षण संस्थान द्वारा हमारे द्वारा चलाए जाते हैं और उन पाठ्यक्रमों में अगर देखें तो अधिकतर स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार ही पाठ्यक्रमों का चयन किया जाता है जिससे जो सीखने वाला प्रशिक्षु है उसको अपनी परिस्थितियों में प्रशिक्षण के साथ साथ अपनी आत्मनिर्भरता के अवसर भी उपलब्ध हो सकें। अधिकतर कोर्स इसमें महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर देखें तो जन शिक्षण संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमने जन शिक्षण संस्थान बीकानेर द्वारा भी महिला आत्मनिर्भरता और महिला स्वावलंबन के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। उसी दृष्टि से हम ऐसे कोर्सों का भी चयन करते हैं जिनमें मुख्यतः महिलाएं और वो महिलाएं जो एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की हैं सुदूर गांव में ढाणियों में रहती हैं उनके लिए भी आत्मनिर्भरता का अवसर बने। 11 से 12 प्रकार के काम हर साल हम जनरेट करते हैं। सूचना तकनीक से जुड़े हुए कंप्यूटर प्रशिक्षण भी हमारे कार्य में है और अगर देखें तो जूट एंड क्राफ्ट का भी काम है। हाथ की कसीदागारी जो बीकानेर में एक प्रकार से देखें पुगल साइड हैं आपके खाजू वाला साइड हैं अगर आप देखें उनकी हाथ की कढ़ाई को भी हाथ की कसीदाकारी का जो प्रशिक्षण केंद्र है उससे उनको रोजगार

0: रोजगार उपलब्ध होता है। तो जन शिक्षण संस्थान द्वारा जितने भी कोर्स एक साल की कार्य योजना में प्रस्तावित किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, वे सारे रोजगार और स्वरोजगार में वृद्धि करने वाले कोर्स हैं, आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाले कोर्स हैं।
1: अंततः कहा जा सकता है कि जन शिक्षण संस्थान योजना केवल एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। यह योजना समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर नागरिकों का निर्माण कर ये योजना विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो श्रोताओं, इस योजना की जानकारी अपने आसपास जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही कई और लाभकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे विकास यात्रा की आने वाली कड़ियों में भी। इसी उम्मीद के साथ कि विकास की ये यात्रा अनंत तक जारी रहेगी, बरखा थानवी व्यास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: ये था हमारा विकास यात्रा का आज का अंक। आलेख और प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। संयोजन था श्री अमित सिंह का।

अभी आप सुन रहे थे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार की जन शिक्षण संस्थान योजना पर आधारित कार्यक्रम विकास यात्रा।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को हैं प्रस्तुत है हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं।

0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बैठक रखी गई है। बैठक में एनडीए के शासन करने वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में सुबह से विशेष पूजा आरती और प्रार्थना सभाएं रखी गई हैं। देवस्थान विभाग के सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जैसलमेर स्थित बांके बिहारी मंदिर और पोकरण के बाबा रामदेव मंदिर में विशेष पूजा की गई। वहीं पाली के सुमेरपुर के जोगेश्वर महादेव मंदिर में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पूजा कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। बारा में भी जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने विशेष पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पिछले 12 सालों में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है। सवाईमाधोपुर के रहने वाले जयदीप सिंह राजावत ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को उपयोगी बताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: मेरा नाम जयदीप सिंह राजावत है। मैंने सूर्यघर योजना में 3 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगवाया था, जिसमें मैंने मेरा जो राशि थी वो 2 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से मुझे 78,000 रुपये सब्सिडी के द्वारा किए गए केंद्र सरकार के, और इस स्कीम से बहुत लाभान्वित हुआ मैं। मुझे अभी तक एक भी बिल का राशि देने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं इस स्कीम के लिए आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये आगे निरंतर बनी रहे।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल से मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
2: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया, और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का और 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ये नारी चौपाल जिला और ब्लॉक स्तर पर लगाई जा रही है। इन चौपालों का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। जैसलमेर में नगर परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय नारी चौपाल रखी गई है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता के अवसरों के बारे में बताया जाएगा। बाड़मेर में होने वाले आयोजन में विभिन्न विभागों के अधिकारी और लाभार्थी महिलाएं भाग लेंगी। अजमेर के सभी 5 ब्लॉक में नारी चौपाल लगाई जाएंगी। इनमें राजीविका से जुड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां हिस्सा लेंगी। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सभागार में होने वाली नारी चौपाल में महिलाओं के लिए विभिन्न सत्र रखे गए हैं।
3: नारी चौपाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम जैसे विषयों पर जागरूकता संवाद सत्र आयोजित कर महिलाओं में निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में राजीविका समूहों की सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन तथा विभिन्न विभागों की महिला प्रतिनिधि भाग लेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। कल हुई इस आगजनी

0: गोलीबारी की घटना में कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। तीन लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा है कि ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। मामले की जाँच की जा रही है तथा अवैध रूप से संचालित गोदाम और फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। ये भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुचारू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चार सूत्री रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि बंदरगाह प्राधिकरण इस विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल देवांशी शर्मा ने अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर बी हैंड बैलेंस की व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं हेड कांस्टेबल गायत्री देवी ने सीनियर सी महिला बैक बेंडिंग इंडिविजुअल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों को ये पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी ये सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। तेज उमस भरी गर्मी और धूप की तपिश से लोग प्रभावित हैं। कल ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकांश हिस्सों में पारा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। दिन के साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू में पारा 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने और कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने तथा तेज धूल भरी हवाएं चलने की आशंका जताई है। वहीं आज जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
3: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
3: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही।

0: हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
0: जी
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
0: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजी जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ, बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भून कर एक पेय बनाया।
0: जी
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की,
0: जी
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि यह समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती हैं।
0: जी,
1: फिर क्या होता है विमलेश जी?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं।
0: जी
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है।
1: जो थोड़ी हल्की होती है, ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
0: जी
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: इथोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-5599 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया।

0: और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
1: अच्छा कमल जी,
0: जी
1: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
0: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
1: ओह,

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हां,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ, तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें।

0: क्योंकि ये केरल की रहने वाली है।
1: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
0: अच्छा।
1: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
0: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
2: वांडी पेरियार?
0: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
2: जी,
0: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा।
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
1: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
2: अच्छा।
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास इडामलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: कर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, सिम्बा फिल्म से। स्वर है राहत फतेह अली खान, असीस कौर और तनिष्क बागची के।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

नोटबुक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहित चौहान और विशाल मिश्रा की आवाजों में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मों से गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है कलयुग, स्वर है अतीफ असलम का।

0: शहर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

फिल्म बेशरम का ये गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है वास्तव, स्वर है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के।

रॉय फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। स्वर थे मीत ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर के। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है हीरो, स्वर है राहत फतेह अली खान का।

फिल्म यस बॉस में कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने को है प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। अब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्ष

0: देशों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPAs बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPAs कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPAs लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया, कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
0: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग PPP कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो

0: आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
1: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
0: पीपल
1: प्लैनेट
0: और प्रोडक्टिविटी।
1: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
0: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
1: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
0: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
1: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
0: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था, अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
0: जी,
1: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा, ये

0: एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है। लेकिन इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए।
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है,

0: लिबरली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स,
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, इसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने के कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका

0: फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
1: धन्यवाद।
0: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
1: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है, और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
0: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
1: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
0: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
1: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
0: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
1: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को

0: शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था। वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है। जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है। उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है। और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए।

0: उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इजराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रही है। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना, और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

अभी आपने सुना केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 11:35 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत।

ये गीत जो अभी हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है पवित्र पापी। ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई और ये गीत फिल्म के मुख्य कलाकार बलराज साहनी पर फिल्माया गया। ये बहुत ही भावुक गीत है और किशोर कुमार ने बेहतरीन आवाज में इसे गाया है और इस गीत को किशोर कुमार के बेहतरीन भावुक गीतों में गिना जाता है। इस गीत को अपने बोल देने का काम किया है गीतकार प्रेम धवन ने। तो चलिए सुनते हैं फिल्म पवित्र पापी का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

0: अभी आपने सुना फिल्म पवित्र पापी से गीत। लीजिए अब सुनते हैं 1971 में आई फिल्म आनंद से गीत। गीत के बोल हैं, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। इस गीत को फिल्माया गया है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन पर, और यह गीत प्रसिद्ध संगीतकार सलील चौधरी द्वारा लिखा गया है। यह गीत प्रसिद्ध संगीतकार सलील चौधरी द्वारा रचित है और इस गीत को लिखा है योगेश ने, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है महान गायक मुकेश ने। यह गीत जीवन की अनमोल यादों और प्रियतम के इंतजार की भावनाओं को समर्पित है, जिसमें हंसी और गम के मिले जुले एहसास शामिल है। तो लीजिए सुनिए फिल्म आनंद से गीत।
1: मैंने

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। इसी कड़ी में आप सुनते हैं फिल्म श्रीमान फंटू से ये गीत। ये फिल्म आई थी वर्ष 1965 में और इस फिल्म का एक बहुत ही क्लासिक गीत है यह दर्द भरा अफसाना। इस सदाबहार गीत को महान गायक किशोर कुमार ने गाया है और इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने संगीतबद्ध किया है और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। वास्तव में यह एक बेहद भावुक गीत है और फिल्म में इसे बहुत ही दुखद परिस्थितियों में फिल्माया गया था। अगर इस गीत के बोल की बात करें तो यह दर्शाते हैं कि इस फिल्म में नायक का प्यार अधूरा रह गया है और उसके सब प्रेमी ने प्रेमिका ने उसे धोखा दिया है, तो वह अपने टूटे हुए दिल और तन्हाई की दास्तां इस गाने में सुना रहा है। तो चलिए आप भी सुनिए इस गीत को।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म श्रीमान फंटू से गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म फरार से। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई और जो ये गीत है, ये जिंदगी क्या है, इस गीत का बहुत ही भावुक और सुप्रसिद्ध गीत है। अपनी दर्द भरी और रूहानी आवाज़ के लिए मशहूर मुकेश ने इस गाने को अपनी आवाज़ दी है और इस खूबसूरत से गीत को अपने संगीत से सजाया है कल्याण जी और आनंद जी की मशहूर जोड़ी ने। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे हैं और वो बताते हैं कि इंसान की जिंदगी और कुछ नहीं बल्कि पुरानी यादों और मिले हुए जख्मों की एक बारात है। ये बारात देखे और अनदेखे सपनों का कारवा होती है। वास्तव में इस गीत का सार है कि जिंदगी में कौन कहाँ मिल जाए और कौन खो जाए कोई नहीं जानता। वक्त करवट लेता है तो सब बदल जाता है। जब दिल में दर्द होता है तो वही दुआ फरियाद बन जाती है। तो चलिए इस खूबसूरत से गीत को मुकेश की आवाज़ में सुनते हैं।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म दो और दो पांच से गीत। ये फिल्म आई थी वर्ष 1980 में और जिस खूबसूरत से गीत की हम बात कर रहे हैं उस गीत के बोल हैं, मेरी जिंदगी ने मुझ पे क्या एहसान किया है। ये दर्द भरा गीत जिसे महान गायक किशोर कुमार ने अपनी जादुई आवाज दी है और इस गाने का संगीत राजेश रोशन द्वारा तैयार किया गया था और इसके बोल अनजान द्वारा लिखे गए थे। फिल्म में इस गीत को अभिनेता अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर फिल्माया गया था। अगर हम इस गाने की भावों की बात करें तो इस गाने में जिंदगी की सच्चाई, अधूरे सपनों और प्यार में मिलने वाले दर्द का बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक चित्रण किया गया है। आप भी पूरे मन से इसे सुनिए और महसूस कीजिए किशोर कुमार की इस भावुक आवाज़ को।

जो मिला खो गया, क्या मेरे पास है, दर्द ही दर्द है।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। 12 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा

0: के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अभी आप सुनेंगे 12:10 पर कुछ ही देर में कार्यक्रम लोक संगीत। 12:40 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का। 1:05 पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम होगा महिला जगत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता। विषय होगा लैंगिक समानता और स्वयं सहायता समूह विषय पर श्रीमती पूजा देवी से श्रीमती मधु शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति रहेगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजक हैं श्री अमित सिंह। 2:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। हमारी सांध्यकालीन सभा में 5:05 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं दिव्या सारस्वत और ओजस्वी भटनागर। तो सुनिएगा 5:05 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 7:00 ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहेंगे संदीप कुमार पारेख और मुक्ता जैन। तो 7:00 ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत। 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। रात्रि 8:00 समय रहेगा फिल्म संगीत का।

8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

अभी आपने सुना हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 12:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए लोक कलाकार अब्दुल गनी की आवाज में ये लोकगीत।

आपने सुना लोक कलाकार अब्दुल सकूर सुलेमानी की आवाज में ये लोकगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत, लोक कलाकार अभय सिंह गहलोत की आवाज में।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारो चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लीजिए सुनिए भूंगर खा और साथियों की आवाज में कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 12:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम में। सुनते हैं फिल्म आशिकी से गीत। आवाजें हैं कुमार सानू की और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। तो लीजिए सुनिए फिल्म आशिकी से गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म डर से गीत।

समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है, कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में एक विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में पूजा आरती और प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की और देश प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। नेत्रदान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से नेत्रदान का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नेत्रदान का निर्णय किसी की अंधेरी दुनिया में नई रोशनी और नई उम्मीद बन सकता है। नेत्रदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आम लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक वाहन चलाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष यातायात और कानून पालन अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के 8वें दिन कल करीब 8,500 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बी.एल. मीणा ने बताया कि इस दौरान वाहनों पर काली फिल्म लगाने, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों तथा बिना अनुमति के वाहन मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रखरखाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कई उपाय शुरू किए हैं। इसके तहत NHAI ने शहरी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियों के मशीनों के जरिए रखरखाव और साफ सफाई तथा स्वचालित गड्ढा भरने के लिए उपकरणों की तैनाती के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों और रखरखाव प्रक्रियाओं को अपनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव और गुणवत्ता में सुधार करना है।

0: प्रदेश में कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से 14 जून तक जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच आज तेज गर्मी से हाल बेहाल हैं। पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। कल कई सीमावर्ती इलाकों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 1:05 हुए हैं। अब महिला श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे, महिला जगत।

स्वागत है सखियों आपका आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी सखी अन्विती गोस्वामी। तो कीजिए स्वीकार मेरा स्नेह भरा नमस्कार। पता सखियों, आपसे यहाँ मिलने आते समय बेहद खूबसूरत पंक्तियों पर नजर पड़ी कि दूर से ही सही पर दिल से राबता रखना, दूर से ही सही पर दिल से राबता रखना, रूहानी सिलसिले होते रहेंगे, राहतों से वास्ता रखना। और मेरा मन राबता इस शब्द पर जैसे अटक कर रह गया। जी हाँ सखियों, उर्दू में बहुत ही खूबसूरत शब्द है राबता या रब्त, जिसका अर्थ होता है जुड़ाव। एक ऐसा जुड़ाव जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, और ऐसे में मन कुछ पल के लिए शांत हो जाए। अब चाय और हवा का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, पर दोनों मिलकर एक ऐसा एहसास बना देते हैं जो दिल को सुकून से भर देता है, और यही होता है रब्त या जुड़ाव। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कितने ही रब्त यानी कि जुड़ाव होते हैं, जैसे कि कोई पुराना गीत जो कभी भी सुने चेहरे पर मुस्कान ले आता है, माँ की वो सीख जो आज भी मुश्किल समय में रास्ता दिखाती है, या फिर किसी दोस्त की मीठी बातें जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। ऐसे ही कुछ रिश्ते, कुछ एहसास, कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी डोर से भले ही ना बंधे हों पर दिल से जुड़े रहते हैं। यही तो है रब्त, एक अनकहा अनदेखा लेकिन गहरा जुड़ाव। आप और हम भी तो उसी गहरे रब्त में शामिल हैं ना, और ये जुड़ाव हमारी दुनिया को और भी बेहतर बना देता है जब हम एक दूसरे से सुनते हैं, समझते हैं और संवाद के जरिए अपने मन के दरवाजे खोलते हैं। तब रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं और समाज भी। कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है आज 10 जून का दिन भी, जो मनाया जाता है सभ्यताओं के बीच संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। और इसका उद्देश्य है देशों, संस्कृतियों और लोगों के बीच संवाद, आपसी समझ और शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, क्योंकि संवाद ही वो पुल है जो भिन्नताओं के बीच भी जुड़ाव का रास्ता बनाता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में रब्त और संवाद को जगह दें, एक दूसरे को सुने, समझें और ऐसे रिश्ते बनाएं जो समाज, सम्मान, विश्वास और अपनत्व पर टिके हुए हों।

0: ആകാശവാണി എട്ട് നയൻറ്റി.
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग.
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान.
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से.
1: बस

0: आइए कर्णी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: और सखियों, अब प्रस्तुत है स्वयं सहायता समूह पर

0: उड़ान
1: आकाशवाणी की कार्य आपकी आवाज जन जन तक।
2: और सखियों अब प्रस्तुत है स्वयं सहायता समूह पर आधारित विशेष कार्यक्रम कदम बढ़ाए चलोगे 21वीं कड़ी, जहां हम सुनेंगे लैंगिक समानता और स्वयं सहायता समूह विषय पर श्रीमती पूजा देवी से श्रीमती मधु शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन श्री अमित सिंह जी का।

0: कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम में आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आप सभी जानते हैं कि कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह योजना पर आधारित है, जो कि महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़ी देश की बड़ी योजना है। बहनों, आज के मेहमान का परिचय हम आपको देंगे, लेकिन बाद में। पहले हम बात करेंगे आज के सवाल की। जी हाँ सखियों, हमेशा की तरह हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, स्वयं सहायता समूह योजना के संबंध में ही होता है, और सवाल का सही जवाब हम देते हैं इस कार्यक्रम के अंत में। तो बहनों सुनिए आज का सवाल। सवाल है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? जी हाँ बहनों, सवाल एक बार फिर से बोल देती हूँ, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर का सही नाम क्या है? इसका सही जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक बहनों सही जवाब सोचिए और कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम भी साथ में सुनते रहिए। चलिए बहनों, कार्यक्रम का अगला कदम रखते हैं और आज के मेहमान से बात करते हैं। बहनों, आज हमने आमंत्रित किया है श्रीमती पूजा देवी को। आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होने के साथ साथ जेंडर दक्ष प्रशिक्षक यानी कि GMT भी हैं। आपसे आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है लैंगिक समानता और स्वयं सहायता समूह। पूजा जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और इस कार्यक्रम यानी कदम बढ़ाए चलो की सभी सखियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। पूजा जी, सबसे पहले आप हमारी बहनों को ये बताएं कि आज के इस आधुनिक युग में लैंगिक समानता के असली मायने क्या हैं?
1: देखिए, लैंगिक समानता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों को एक ही तराजू में तोले या सिर्फ कागजों पर उन्हें बराबर का हक दे। इसका असली मायना है अवसरों की समानता, एक ऐसा समाज बनाना जहाँ किसी भी इंसान की प्रतिभा, उसके सपने और उसकी उड़ान का फैसला इस बात से ना हो कि वह लड़का है या लड़की। जब एक बेटी आसमान छूने का सपना देखे कि उसे हौसला दे। असल समानता तब है जब एक व्यक्ति की पहचान उसके जेंडर से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत के आधार पे हो, कि उसकी काबिलियत क्या है, वह लड़का है या लड़की। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसकी काबिलियत पे होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा पूजा जी आपने कि हमारी काबिलियत का फैसला हमारे जेंडर के आधार पे नहीं बल्कि हमारी सोच या फिर हमारी हौसले के हिसाब से होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अब पूजा जी ये बताइए कि लैंगिक समानता जो है वो उसका स्वयं सहायता समूह से क्या संबंध है?
1: देखिए, जो आज का हमारा समाज है उसमें फिर भी थोड़ा परिवर्तन आया है। जो पहले समाज था वो पुरुष प्रधान था।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें सभी चीजें पुरुषों पर आधारित थी। महिलाओं की परिवार के अंदर एक अलग से जगह थी कि उसका काम अलग होता था। धीरे धीरे समूह में जुड़ने के बाद महिलाओं को ये समझ में आया कि हम भी कुछ अलग सोच सकते हैं, हमारा केवल यही काम नहीं कि हम खाली चूल्हा चौका करें।
0: बिल्कुल।
1: ठीक है, उनके सपने जो थे वो थोड़े अलग होने लगे, वो घर के कामों के साथ आर्थिक सहायता भी करने लगी। इसी तरीके से हम स्वयं सहायता समूह में जुड़ के महिलाओं को ये लैंगिक समानता, जो जेंडर इक्वेलिटी होती है, उसके बारे में जागरूकता का काम करते हैं।
0: बिल्कुल, यानी कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद आप महिलाओं को ये बताती हैं कि भाई आपके अंदर भी कुछ पोटेंशियल या भी यानी कुछ है, आपके अंदर भी काबिलियत कि आप उस हिसाब से काम कर सकती हैं, है ना? ऐसा नहीं कि आप पुरुषों से कम हैं, आप भी पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं, उनका हाथ बटा सकती है ना?
1: बिल्कुल।
0: अब पूजा जी ये बताइए कि हमारे समाज में आज भी सोच के स्तर पर कई जगह भेदभाव देखने को मिलता है, आपको क्या लगता है कि इस बदलाव की शुरुआत आखिर कहाँ से होनी चाहिए?
1: देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, बदलाव की सबसे पहली पाठशाला हमारा घर, हमारे संस्कार है। जब हम बचपन में एक बेटे को गिरने पर यह बंद कहना बंद कर देंगे कि लड़कियों की तरह रो मत,

0: और बेटी को यह कहना बंद कर देंगे कि तेरे को अगले घर जाना है,
1: बिल्कुल
0: तब बदलाव की शुरुआत होगी, असली बदलाव की नींव रखी जाएगी। शिक्षा वह मास्टर की है जो रूढ़िवाद के ताले खोलती है। मतलब हमें अपने बेटों को बेटियों को बराबर पढ़ाना चाहिए। ये जो रूढ़िवाद का ताला है वो शिक्षा ही खोलेगी, बल्कि संवेदनशील बनाना चाहिए। बदलाव किसी से योजना से नहीं आएगा, बल्कि हमारे घर के ड्राइंग रूम की बातचीत से होगा।
1: बिल्कुल, हमारे घर के माहौल से
0: बिल्कुल,
1: होगा।
0: जो हम घर पे बात करेंगे बच्चे उसी से बदलाव सीखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: कि ये जो सोच होती है, ये लड़का है, ये लड़की है, इसका काम ये है, इसका काम ये है, ये जो चीज़ होती है वो हमारी बातचीत से शुरुआत होगी। वहीं से हमारी सोच बदलेगी और भेदभाव का जो अभी चल रहा है वो धीरे धीरे बंद होगा।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने पूजा जी। अब ये बताइए कि अक्सर जो लोग होते हैं ना, वो ये मान लेते हैं कि लैंगिक समानता सिर्फ महिलाओं के हक और उनके अधिकारों की बात है, क्या इसमें पुरुषों की भी कोई भूमिका है?
0: यह है बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है। ये जो बात है कि इसमें पुरुषों की भूमिका है वो गलतफहमी है। लैंगिक समानता पुरुषों के खिलाफ महिलाओं की कोई जंग नहीं है। ये एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाने की यात्रा यानी साझा की जाती है। जरा सोचिए, जब हम जेंडर की भूमिका तय कर देते हैं तो हम पुरुषों पर भी कभी ना रोने और अकेले पूरे घर का आर्थिक बोझ उठाने का सारा दबाव डाल देते हैं। समानता का अर्थ जिम्मेदारी को बढ़ाना। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगी और पुरुष घर की जिम्मेदारियों को गर्व से साझा करेंगे तो परिवार और समाज तीनों तेजी से बढ़ेंगे।
1: यानी कि सारी जिम्मेदारी हमें पुरुषों के कंधों पे ही नहीं डालनी चाहिए, है
0: बिल्कुल,
1: ना, और उसमें
0: ये
1: हम
0: जो
1: महिलाओं
0: सोच
1: को भी बराबर योगदान करना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: ये जो सोच थी कि महिला का काम खाली घर का काम करना है और पुरुषों का काम घर का सारा आर्थिक बोझ उठाना है, तो वो चीज भी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि महिलाएं जब काम करेगी तो वो आर्थिक सहायता करेगी।
1: बिल्कुल। अब ये बताइए कि जो ये जेंडर दक्ष प्रशिक्षक होता है, तो वो होने के नाते आपके क्या-क्या कार्य होते हैं?
0: जैसे ये जेंडर का प्रशिक्षण होता है, उसके अंदर स्वयं सहायता समूह में जुड़ी 10 महिलाओं में से एक महिला का चयन किया जाता है। वो एक महिला, उसकी कुछ योग्यताएं होती हैं, उसका स्वभाव, उसकी पहुंच और वो थोड़ा सा संयम होना चाहिए। फिर उस एक महिला को 10 महिलाएं, अगर किसी में कोई समस्या है, वो समस्या किस आधार पे होनी चाहिए, शिक्षा, संपत्ति, हिंसा और बाल विवाह, इन 4 मुद्दों पे जेंडर काम करता है। ये ही 4 मुद्दे महिलाओं को आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब कभी कोई महिला परेशान होती है किसी बात को लेके, जैसे उसके परिवार में भेदभाव ज़्यादा होता है, सास की कोई समस्या होती है, उसका पति सही नहीं चलता, ऐसी कोई भी समस्या हो, वो महिला, 9 में से कोई महिला उस एक महिला को आके अपनी बात बता सकती है। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे घर के मुद्दे हम नहीं चाहते कि पुलिस थाने तक जाए।
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल, ये जो बात होती है घर की बात घर में रखने की, तो वहाँ वो महिला पुलिस थाने नहीं जाके उस महिला को बता सकती है। वो 10 में से 1 महिला जिसका हम चयन करते हैं, वो
1: मतलब
0: होती है,
1: आपने जिसको चयनित किया उसको
0: बिल्कुल,
1: आके बता सकती
0: उसको
1: है।
0: आके बता सकती है, उसको हम बोलते हैं GPP, जेंडर पॉइंट पर्सन। उस 10 महिला में से 1 महिला का हम चयन करते हैं, GPP दीदी बोलते हैं उसको। वो महिला GPP दीदी जो होती है, उसकी प्राथमिकता ये होती है कि उसका जो मुद्दा था वो गोपनीय रखे।
1: अच्छा,
0: कई बार ये होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारी बात समाज
1: नहीं,
0: में
1: कई बातें
0: परवर,
1: ऐसी होती है जो गोपनीय
0: हाँ,
1: रखनी
0: गोपनीय
1: चाहिए।
0: रखनी चाहिए,
1: हाँ।
0: तो वो उस मुद्दे को लिखित में लेती है, बिना नाम लिखे लेती है, उस मुद्दे को जेंडर फोरम में लेके जाती है, जहाँ पे उस बात को सुलझाया जाता है, उस बात पे विचार किया जाता है। ये इस जेंडर मास्टर ट्रेनर का काम होता है, दक्ष प्रशिक्षक का काम होता है कि उस मुद्दे को आगे लेके जाए।
1: यानी आपका ये काम है कि भी आप महिलाओं को जो भी समस्या है, घरेलू समस्या है, जेंडर
0: घरेलू
1: से
0: समझ
1: संबंधित
0: जेंडर संबंधी
1: संबंधित जो समस्या है, उसका आप उसकी बात सुनते हैं, उसकी
0: उसकी बात,
1: समस्या को
0: समस्या को
1: समझते
0: सुनते,
1: हैं
0: बिल्कुल
1: और उसका समाधान करते हैं।
0: उसका समाधान करते।
1: अभी बताइए पूजा जी कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आप कब कब प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण का मॉड्यूल क्या होता है?
0: स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं को हम महीने में एक बार ये जेंडर वाली मीटिंग रखवाते हैं। उस मीटिंग पे इसी मुद्दों पे बात होती है। जैसे मान लो किसी के परिवार में आर्थिक स्थिति सही नहीं, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो वो लेके शिक्षा को लेके मुद्दा हो गया। ऐसे ही 3-4 मुद्दे और होता है जिस पे बात की जाती है। महीने में एक बार मीटिंग होती है, ये हमारा SIST वर्टिकल के अंदर आता है।

0: अंदर हम जेंडर पे और FNSW दो पे काम करते हैं। जैसे दो ही चीज़ को लेके समस्या होती है, या तो हमारी सोच को लेके या हमारे खान पान को लेके। तो FNSW का काम होता है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश, जिसके अंदर हमें कैसे क्या कितना कितना सुरक्षित खाना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। और जेंडर पे बात तब होती है जब हमारी सोच सही रहती है।
1: बिल्कुल
0: तो महीने में एक मीटिंग होती है, GP भी दीदी इस पे काम करती हैं, और ये मुद्दा आगे सुलझाने तक जाता है, ये इस मुद्दे का पूरा निवारण होता
1: बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप पूजा जी। अब ये बताइए कि है ना, जैसे ग्रामीण परिवेश है और छोटे शहरों में भी जहाँ आज भी पुरानी परंपराओं का प्रभाव है, वहाँ पे लैंगिक समानता का संदेश कैसे पहुँचाया जा सकता है?
0: है। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि परंपराएं समाज को जोड़ने के लिए हैं, किसी की तरक्की को रोकने के लिए नहीं होता। जब हम उन्हें उदाहरण देते हैं कि कैसे एक शिक्षित परिवार, सशक्त बेटी पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है, तो वह बहुत जल्दी जुड़ते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक बेटा पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है,
1: और
0: और एक
1: जब एक
0: बेटी
1: बेटी
0: पढ़ती
1: पढ़ती है
0: है
1: तो
0: तो
1: पूरा
0: पूरा परिवार
1: परिवार
0: पढ़ता
1: पढ़ता है।
0: है।
1: बिल्कुल
0: हम इसे सरल संदेश को उन लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाना होगा। हम यही चाहेंगे कि हम महिलाओं को ये समझाएं कि हमें बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाना है।
1: अभी बताइए कि स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षक के रूप में आप कौन-कौन से विषयों पर चर्चा करते हैं?
0: हमारा मुद्दा जेंडर को लेके होता है, जिसके अंदर शिक्षा, संपत्ति, हिंसा और बाल विवाह होता है, और हम जेंडर फोरम की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। अब समस्या आती है कि हमारे मुद्दे तो इकट्ठे हो गए, लेकिन उसका समाधान कौन करेगा? हम यही चाहते हैं कि शिक्षा को लेके अगर मुद्दा हुआ तो वो आगे कहाँ जाएगा, उसका हल कौन करेगा? तो जब ये CLF लेवल पे जाता है, जेंडर फोरम बनता है, तो वहाँ पे शिक्षा को लेके शिक्षा अधिकारी रहते हैं, हिंसा, संपत्ति, बाल विवाह को लेके जब भी मुद्दे आते हैं तो आंगनबाड़ी से, हमारे स्वास्थ्य विभाग से, हमारे BDO, SDM, जो भी सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, वो सारे एक ही साइड में बैठते हैं, उन मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि परिवार की, महिला की, गांव की जो महिला है, उसकी इस बात को गोपनीय रखा जाता है।
1: पूजा जी, क्या आप मानती हैं कि लैंगिक समानता के बारे में आज भी हमें जागरूकता की आवश्यकता है?
0: देखिए, जितना लैंगिक समानता पे बात करते हैं, तो आज से स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से पहले जो महिलाओं की स्थिति थी, उनका खाली काम यही होता था कि उठ गए, घर का काम कर लिया, वही काम उनको दूसरे दिन करना होता था। ना तो उनकी सोच आगे थी, ना कुछ, और ना महिलाओं में पहुंच थी, ना नियंत्रण था, क्योंकि उनकी खुद की जो सोच थी वो वही थी। एक महिला ही महिला का दुश्मन मानी जाती है।
1: बिल्कुल
0: जो सास करती थी वही बहू को करना है, वही आगे उसको अपनी पीढ़ी के लिए करना है। तो लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद महिलाओं में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन वाली चीज़ एक दिन में नहीं होती, उसको हमें लगातार रखना चाहिए। हाँ, हो रहा है, लेकिन अभी तक भी कुछ हिस्सों में काम बाकी है।
1: कितनी मात्रा में, मतलब
0: जैसे मानते हैं कि एक स्वयं सहायता समूह में अगर 10 महिलाएं हैं, एक GPP दीदी बनी, तो उसमें समानता वाली बात आई, उसने 9 लोगों की बात सुनी, उसको समझ में आया। लेकिन उन 9 में से 3 को आज भी ज़रूरत है। उन 9 महिलाओं में से 3 महिलाओं को आज भी लैंगिक समानता पे बात करने की आवश्यकता है।
1: यानी उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, वो इतनी आगे नहीं बढ़ पाई
0: बिल्कुल,
1: हैं
0: वो
1: कि इस
0: इतनी
1: चीज़
0: आगे,
1: को समझ
0: हाँ,
1: सकें।
0: वहाँ पे हम शिक्षा को लेके कमी मानते हैं, क्योंकि आज भी उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो महिलाएं बात कर सकें।
1: यानी अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो इस समस्या को समझेंगी, इसके
0: बिल्कुल
1: बारे में जानेंगी,
0: बिल्कुल,
1: यानी उनको शिक्षित करने की पहले ज़्यादा ज़रूरत
0: पहले
1: है।
0: शिक्षित करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें स्वयं सहायता समूह ने छोटे छोटे कई तरीके के प्रशिक्षण करवाए, उनको रोजगार दिया, तो उसमें परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन आज भी थोड़ी,
1: ज़रूरत है
0: हाँ,
1: और
0: थोड़ी ज़रूरत आज
1: थोड़ी
0: भी
1: और
0: है।
1: ज़रूरत है अभी आगे बढ़ने के
0: हाँ,
1: लिए।
0: बिल्कुल, थोड़ी ज़रूरत और भी है।
1: अब ये बताइए कि आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो इस संबंध में जेंडर प्रशिक्षण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं अपनी युवा बहनों से, साथियों से बस यही कहूंगी कि बदलाव का इंतजार मत कीजिए, खुद बदलाव बनिए। अपनी बहनों, अपने सहपाठियों, अपनी महिला सहकर्मियों को मैं सपनों का सम्मान करती हूँ। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ हमारी सोच इतनी ऊंची हो जाए कि भेदभाव के लिए कोई जगह ही ना रहे। याद रखिए, समाज एक रथ की तरह है, और जब इसके दोनों पहिए अर्थात स्त्री और पुरुष बराबर होंगे, तभी समाज का रथ और तेजी से चलेगा और सुरक्षित दौड़ेगा।
1: बिल्कुल, जैसे कि रथ के दो पहिए हैं।

0: रथ के दो पहिए
1: हाँ,
0: हैं।
1: जो बराबर चलेंगे तभी हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार विकसित होगा तो हमारा समाज विकसित
0: समाज
1: होगा।
0: विकसित होगा।
1: तो पूजा जी, आप हमारे इस कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम में आई और हमारी बहनों को लैंगिक समानता और स्वयं सहायता समूह विषय पर गहन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूजा जी, हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हम धन्यवाद के रूप में हमारे मेहमान को उनकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, तो आप भी बताइए कि आपकी पसंद का गीत कौन सा है, ताकि हम आपको और साथ में हमारी बहनों को ये गीत सुनवा सकें।
0: वैसे तो मधु जी, मुझे गाने तो बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी मूवी का लता जी और किशोर जी का गाना ना तेरा फूलों जैसा रहे, वो मुझे और मेरी सारी बहनों को सुना दी।
1: बिल्कुल, तो फिर चलिए बहनों, सुनते हैं पूजा जी की पसंद का गाना हम सभी मिलकर।

0: के अंत में अभी तो हम आपको सुनवाते हैं वो कहानियाँ जिन्होंने एक एक कदम बढ़ाकर स्वावलंबन का लक्ष्य प्राप्त किया है। बिल्कुल सही समझे हैं आप बहनों, तो सुनिए उन महिलाओं की सफल कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: जसोदा स्वयं सहायता समूह है कतरिया सर से, और इसमें कम से कम 10 या लेडीज अपना एक समूह बनाती है और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों को बनाती है। बाद में जब अमृता आठ में ये जो मेला लगता है तब वो अपनी चीज़ों को सेल करती है। समूह गांव की महिलाएं इकट्ठी की जाती है, उनमें से जो जिसके पास जो हुनर है उसके अकॉर्डिंग एक समूह बनाया जाता है, और उसके अंदर सरकार काम को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी देती है, लोन देती है, और जैसे जैसे उनका फीडबैक अच्छा रहता है वैसे वैसे लोन की जो रकम है वो भी बढ़ती जाती है, और उसमें छूट का भी प्रावधान रखा जाता है। समूह को लाभ देखो ये है कि गांव की महिलाएं जितनी ज़्यादा मोटी होगी, उनको जितना ज़्यादा जोड़ा जाए, हुनर भी इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो अभी लेटेस्ट में यही है कि सूट पे कढ़ाई पेंटिंग का जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें ये समूह जुड़ा हुआ है और हाथ से कर रहे हैं। डाइला की इसकी एक मशीन आती है, उससे आप जैसा प्रिंट जैसी कढ़ाई चाहते हैं वैसी वैसी बनाई जा सकती
2: है। मेरा नाम सुमन शर्मा है, मेरा समूह का नाम विधा SHG है, और मैं 2007 से इस SHG का ग्रुप बनाकर जुड़ी हुई हूँ। महिलाओं को 30 महिलाओं को रोजगार भी दे रखा है, और हर राजस्थान के कहीं भी कोई से भी ज़िले में एग्जीबिशन लगता है, हम पूरा प्रोडक्ट लेकर वहाँ जाते हैं और महिलाओं को प्रोत्साहन देते हैं कि भाई उनका प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं और उनको वो पैसा भी देते हैं। समूह बनाने से हमें एक फ़ायदा हुआ कि जो घर में महिलाएं थी जिनका पास कला थी लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी, तो ऐसी महिलाओं को जोड़कर उनकी कलाओं को बाहर निकालने के लिए हमने उनको प्रेरित किया और समूह बनाया। समूह बनाकर उनको वही रोजगार दिया जो उनको आता है, वो अपना जैसे दिवाली सीजन में डेकोरेशन का सामान बनाती हैं, बहुत यूनिक यूनिक आइटम बनाती हैं बहुत सी महिलाएं, लेकिन उनकी पहले कोई पहचान नहीं थी, आज उनकी पहचान है कि वो उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है।
0: ये थी आज की सफल कहानियाँ। बहनों ये तो तय है कि जो लोग कुछ करने का इरादा रखते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस करना शुरू करते हैं और मंजिल पा ही लेते हैं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ है उस सवाल का सही जवाब जो हमने आपको पूछा था कार्यक्रम के प्रारंभ में। सवाल था राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है। सखियों सवाल का सही जवाब है रूमा देवी। चलिए अब उन्हीं को सुनते हैं क्या कहती हैं रूमा देवी।
3: जब समूह में हम काम करते हैं तो एक दूसरे का हौसला भी बढ़ता है और ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा सफाई से काम होता है। तो मैं मेरी बहनों से यही कहूँगी कि आप समूह में मिलजुल के अगर काम करेंगे तो बहुत बेहतर काम कर पाएंगे, और अगर आपके पास में बड़ा ऑर्डर आ रहा है तो भी आप समूह में करेंगे तो उसको जल्दी पूरा कर पाएंगे। मैं उन बहनों को यही कहना चाहूँगी जो जिनके मन में बहुत झिझक है करना, कुछ काम करना चाहती है अपने लिए या अपनी बहनों के लिए, तो उन बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ हैं चाहे गांव में हैं चाहे शहर में हैं, चाहे कम पढ़ी लिखी है या ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आप बिल्कुल ना सोचें, आप जो करना चाह रहे हो जहाँ बैठे हो वहीं से अपने काम की शुरुआत करें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें और उस काम की शुरुआत करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो काम को हम कर रहे हैं वो अपन को खुशी खुशी शुरुआत करनी चाहिए, उस पर अपन को भरोसा होना चाहिए, वही भरोसा हमें आगे तक। शुरुआत में तो सारी चीज़ों की दिक्कतें आती हैं, परिवार वालों को भी भरोसा नहीं होता है कि पता नहीं ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन सबसे पहले घर वालों का भरोसा जीतना ज़रूरी है, उनको भरोसा दिलाना है कि मैं घर भी संभाल सकती हूँ और मैं मेरा काम भी संभाल सकती हूँ। जब आप उनका भरोसा जीत लोगे तब वो आपके साथ में खड़े होंगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ। आपके साथ में आपका परिवार ही नहीं पूरा समाज आपके साथ में खड़ा होगा कि इन बेटी ने इन बहू ने ये वो कर दिखाया है जो आज तक महिलाएं सोचती आई है, बेटियां सोचती आई है कि हम करेंगे लेकिन वो नहीं कर पाई, ये इस बहन ने कर दिखाया है। तो आप बिल्कुल बेझिझक रहिए।
0: सुना बहनों आपने, ये थी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती रूमा देवी। आप कई रूमा देवी बना चुकी हैं और इनका ये सफर अनवरत जारी है। सफर तो हमारे कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम का भी जारी रहेगा, लेकिन आज की इस कड़ी को यहीं विराम देना होगा। कार्यक्रम के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अगले माह के दूसरे बुधवार तक मिलने के वादे के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।

बहनों कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बहनों अब बारी है। जी बिल्कुल नहीं, सवाल के जवाब की नहीं, वो तो हम देंगे आपको कार्यक्रम।

तो सखियों, ये थी स्वयं सहायता समूह पर आधारित विशेष कार्यक्रम कदम बढ़ाए चलो की 21वीं कड़ी, जहां हमने सुनी लैंगिक समानता और स्वयं सहायता समूह विषय पर श्रीमती पूजा देवी से श्रीमती मधु शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन श्री अमित सिंह जी का था।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, हम बात कर रहे थे कि परस्पर जुड़ाव और रिश्तों की बेहतरी के लिए संवाद कितना ज़रूरी है। और जब हम संवाद की बात करते हैं तो याद आता है परिवार का वो माहौल जहां बेझिझक अपनी बात कही जा सके, सुनी जा सके। और परिवार में ऐसा दोस्ताना माहौल और भी ज़रूरी हो जाता है जब परिवार की बच्चियां किशोरावस्था की तरफ अग्रसर हो रही हों। जी हाँ, किशोरावस्था एक ऐसा दौर है जो बदलाव का दौर कहा जाता है। जब शरीर में तेज़ी से बदलाव हो रहे होते हैं, सोच बदलती है, नज़रिया बदलता है, भावनाएं नई होती हैं और मन में होते हैं ढेरों सवाल। ऐसे में बच्चियां अपने मन की बात कहने में संकोच करती हैं, तो हम माएँ ये समझ नहीं पाते हैं कि बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए। ऐसा ही कुछ हुआ मेरी सखी के साथ भी, जब उसकी 12-13 साल की बेटी जो हमेशा चहकती रहती थी अचानक से गुमसुम सी रहने लग गई, खाना पीना भी कम कर दिया और अपने लुक्स को लेकर परेशान रहने लगी। एक बार तो गुस्से के कारण मेरी सहेली ने उसे जोर से डांट भी दिया कि ये क्या हाल बना रखा है। लेकिन ऐसा करने से बात और बिगड़ गई, क्योंकि अब तो बच्ची ने नाराज़ होकर बातचीत भी बंद कर दी थी। तब मेरी सहेली ने समझा कि ऐसे डांटने फटकारने से तो बात और भी उलझ जाएगी। तो फिर उसने क्या किया कि अपना तरीका बदला और गुस्सा छोड़कर अपनी बेटी के कमरे में गई और प्यार से उसे गले लगाते हुए उसकी परेशानी पूछी। इस अपनेपन से और भरोसे ने एक जादू सा काम किया। तब बेटी ने सोशल मीडिया पर उन इन्फ्लुएंसर की रील्स और फोटोज़ दिखाए जो उसी की उम्र के थे कि देखो ना मम्मी, मैं तो इनके आगे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तब मेरी सखी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि ये जो लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये बहुत सारे फिल्टर्स, प्रोफेशनल लाइट्स का, मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। असल ज़िंदगी में तो कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है। हमारी असली खूबसूरती जो होती है ना, वो हमारी सरलता, सहजता, हमारे व्यवहार और हमारे हुनर में होती है। उसे निखारने का प्रयास करो तुम। और इस बात ने सखी की बेटी को सोचने का नज़रिया बदल दिया, एक नया मौका दिया सोचने का। तो यही तो होती है संवाद की ताकत, जो मन के संदेह को आत्मविश्वास में बदल देती है। तो आइए अपने किशोर होती हुई बच्चियों की उम्र के इस मोड़ पर उनके अभिभावक नहीं बल्कि उनके दोस्त बने और उन्हें सही दिशा देने में उनका साथ दें।

सखियों, जैसे कि हमने बात की थी कि किशोरावस्था के इस पड़ाव में बच्चियों से संवाद बहुत ज़रूरी है, आखिर हम भी तो इसी दौर से गुजर चुके हैं ना, तो हमारे पास उन अनुभवों का खजाना है जो बच्चों के मार्गदर्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सच ये भी है कि आज का दौर भी कुछ अलग है। बच्चे के मन में जो भी जिज्ञासाएँ उठती हैं उसका जवाब ढूंढने के लिए वो सहारा लेते हैं डिजिटल माध्यम का। आजकल दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का, यानी कि आजकल संवाद का माध्यम बन गया है AI। आज बच्चे जानकारी के लिए सिर्फ बड़ों पर या किताबों पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि AI जैसे साधनों का भी उपयोग कर रहे हैं। और सिर्फ बच्चे ही क्यों, हर उम्र का व्यक्ति जो डिजिटल जानकारी रखना चाहता है या रखता है, किसी न किसी रूप में AI का उपयोग कर रहा है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि इंसानी दिमाग की तरह सोचने और काम करने वाली तकनीक आज के दौर में हर क्षेत्र में काम कर रही है। किसी विषय की जानकारी ढूंढनी हो, कोई कंटेंट लिखना हो, तस्वीरें बनाना हो, भाषा का अनुवाद करना हो, संगीत कंपोज करना हो, और यहाँ तक कि मेडिकल जाँच, हेल्थ केयर, कस्टमर सर्विसेज में भी AI सहायक है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले उसके हर पहलू पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। AI के भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं, जिसमें गोपनीयता का उल्लंघन होना, डीप फेक जैसी तकनीकों की गलत जानकारी का प्रचार हो जाना, और साथ ही हमारी जो सोचने की क्षमता है, रचनात्मकता है, उसको भी प्रभावित कर सकता है AI। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि AI कितना भी उन्नत क्यों न हो, मानवीय संवेदनाओं का, अनुभवों का और विवेक का स्थान नहीं ले सकता है।

सखियो, एक कवि अपने एहसास को शब्दों में ढालता है, एक गीतकार अपने अनुभवों से गीतों को रचता है। दूसरी तरफ एआई की दुनिया ऊपर से भले ही सुंदर लग सकती है, पर उनमें वो आत्मा नहीं होती है जो अनुभवों से आती है। इसका उपयोग करना गलत नहीं है, पर इस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना भी हमारे दिमागी विकास में रुकावट बन सकता है। सखियों, जीवन निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रक्रिया का नाम है, और सीखने की असली खुशी सीधा सही उत्तर जानने में नहीं, बल्कि उस पूरी यात्रा में होती है जिसमें गलतियां भी होंगी, असफल भी होंगे हम, फिर से प्रयास भी होंगे, और तब हम मंजिल पर पहुंचेंगे। इसलिए तकनीक का इस्तेमाल करें, लेकिन समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। तो इसी बात के साथ निरंतर चलते इस जीवन में ये जो कुछ पल हमें मिले हैं उनका आनंद उठाते हैं इस गीत के साथ।

सखियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब उनमें संवाद की धारा बहती रहे। हम परिवार से संवाद करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं, मित्रों से भी संवाद करते हैं और अब तो तकनीक के इस दौर में AI से भी संवाद करते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो रिश्ता है हमारा अपने आप से। क्या अपने दो पल रुक कर अपने मन से बात की है? कभी उससे पूछा है कि आखिर वो इतना थका हुआ क्यों है? क्या ये केवल शरीर की थकान है या आपका मन भी कुछ कहना चाह रहा है? सखियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम लगातार दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में लगे रहते हैं और अपने मन की बात सुनना भूल जाते हैं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो तनाव,

चिंता, थकान धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? बहुत ही आसान उत्तर है, वो है योग। जी हाँ, दिनचर्या में कुछ पल अपने लिए निकालकर अपनाएं योग को। केवल शरीर को ही लचीला बनाने के काम नहीं आता योग, बल्कि मन को भी स्थिर करने और भीतर की आवाज़ सुनने का भी माध्यम है योग। जब हम कुछ पल शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन का शोर कुछ कम होने लगता है और शुरुआत होती है आत्मसंवाद की। तो अपने आप से आत्मसंवाद कीजिए, क्योंकि आप भी तो हैं परिवार की धुरी।

तो सखियों, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, संवाद की डोर हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि जहाँ संवाद होता है वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्तों में जीवन बना रहता है। इसी संदेश के साथ आगे दीजिए अपनी सखी अन्विती गोस्वामी को नमस्कार।

अभी महिला श्रोताओं ने मेरा कार्यक्रम महिला जगत सुना। प्रस्तुति थी अन्विति गोस्वामी की। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारी दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ सुनेंगी।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से।

0: अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह

0: चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल

0: शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसपे क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म आशाएं से गीत।

अस्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और पलक मुंचाल की आवाज में फिल्म आशिकी 2 से गीत। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म बागी से श्रद्धा कपूर और अरमान मलिक की आवाज में।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ऑल इज वेल से गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनेंगे फिल्म हेट स्टोरी 3 से। आवाजें हैं अरमान मलिक की।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को है हमारी संध्याकालीन सभा, हिंदी में समाचारों से प्रारंभ होती है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई बद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है। वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्य

0: काल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री था गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी बीकानेर के युवाणी कार्यक्रम में आप सभी ऊर्जावान युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त साक्षी।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त ओजस्वी भटनागर। दोस्तों, घड़ी की सुइयां 5:05 पर पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ शुरू हो रहा है आपका और हमारा ये खास कार्यक्रम युवाणी।
0: ओजस्वी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे मन में एक विचार है।
1: अच्छा।
0: हाँ, आज का युवा अपने सपनों की दौड़ में बहुत आगे निकल रहा है, जो कि एक गर्व की बात है। लेकिन इस दौड़ में हम अपने उस सबसे बड़े साथी को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हर पल हमेशा हमारे साथ रहता है, जो कि है हमारा शरीर।
1: बिल्कुल सही कहा साक्षी। हम स्वास्थ्य ही धन है, ये कहावत तो बहुत कहते हैं, पर क्या हम इसको अपने जीवन में वास्तविकता में उतार रहे हैं? हम घंटों स्क्रीन और गैजेट के सामने समय बिता देते हैं, पर अपने फेफड़ों को शुद्ध हवा देने या फिर अपने हृदय को शांत रखने के लिए कुछ पल भी नहीं दे पाते।
0: सच कहा तुमने। एक ज्ञानी ने बहुत सुंदर कहा था, जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पाता, उसे भविष्य में बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ता है। तो क्यों ना आज हम इस चक्र को बदलें और अपने शरीर को एक नई ऊर्जा देने का संकल्प लें।
1: बिल्कुल, इसी स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं

0: बहुत ही मुख्य विषय पर, जो है फेफड़ों और हृदय के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम। साक्षी, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या भस्त्रिका प्राणायाम युवाओं के लिए सबसे प्रभावी होता है?
1: ओजस्वी, भस्त्रिका तो जैसे फेफड़ों के लिए संजीवनी है। ये शरीर में ऑक्सीजन का संचार इतनी तेजी से करता है कि थकान और सुस्ती दूर भाग जाती है। इसके साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हृदय की धड़कन को स्थिरता देता है और मन को भी केंद्रित करता है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और साक्षी, मुझे लगता है कि भ्रामरी प्राणायाम भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है। जहाँ हर युवा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है, भ्रामरी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है, जिसे सीधा असर हमारे दिल पर होता है। ये अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक दबाव को भी कम करने का सबसे अच्छा साधन है।
1: सही कहा। दोस्तों, योग के लिए आपको किसी बड़े इंतजाम की जरूरत भी नहीं है। बस अपनी दिनचर्या में से मात्र 10 से 15 मिनट का समय अपने दिल और फेफड़ों के लिए निकालें। ये छोटा सा निवेश आपको भविष्य की कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा लेगा।
0: तो आज ही संकल्प लें दोस्तों कि कल सुबह से आप अपने दिन की शुरुआत इन्हीं प्राणायाम के साथ ही करेंगे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: दोस्तों, अब समय है हमारे क्विज टाइम सेगमेंट का, जहां हम आपसे हर रोज दो सवाल पूछते हैं और जिसके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में मिलते हैं।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? मैं आज का पहला प्रश्न फिर से दोहराती हूं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है?
0: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, एल नीनो किस भाषा का शब्द है? सवाल फिर सुन लीजिए, एल नीनो किस भाषा का शब्द है? आप इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढिए, हो सकता है कि आपको इनके जवाब कार्यक्रम में ही मिल जाएं। तो कार्यक्रम को सुनते रहिए, तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
0: दोस्तों, ब्रेक से पहले हम सेहत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन साक्षी, अब वक्त है एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय पर बात करने का, और वो है स्वस्थ संवाद और बेहतर सभ्यता।
1: ओजस्वी, ये विषय आज की पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वस्थ संवाद का सीधा अर्थ है अपनी बात को सही तरीके से, शालीनता से और स्पष्टता से रखना। जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हमारी भाषा में सकारात्मकता है? क्या हमारे शब्द सामने वाले को प्रेरित कर रहे हैं? यही वो आधार है जिससे एक बेहतर सभ्यता का निर्माण होता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। आज सोशल मीडिया और भागदौड़ के युग में अक्सर हम संवाद ही करना भूल गए हैं। तुम्हें पता है, मेरे एक टीचर ने मेरे से कहा था, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। पर देखो, आज तो लोग सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरों की सुनना नहीं चाहते। पर दोस्तों, एक सभ्य समाज की पहचान ही यही है कि हम दूसरों की सुने भी और समझें भी। जब हम शांति से संवाद करते हैं तो तनाव कम होता है और हमारे आपसी रिश्ते भी बहुत मजबूत होते हैं।
1: और ध्यान दे दोस्तों कि संवाद का मतलब केवल शब्दों का आदान प्रदान ही नहीं है, स्वस्थ संवाद का मतलब है सहानुभूति के साथ बात करना। जब आप दूसरे के नज़रिए को समझते हैं तो आप छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। यही गुण हमें एक बेहतर सभ्यता की ओर लेकर जाता है। एक स्वस्थ संवाद करने वाला व्यक्ति तनाव मुक्त होता है और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
0: बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, यानी कि अगर हमारी भाषा में सुधार आ जाए, हमें सुनने की आदत हो जाए और सकारात्मकता से बात करने की आदत भी आ जाए, तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं।
1: बिल्कुल ओजस्वी।

0: हमारे युवा साथियों से बस यही कहना है कि आज से ही संकल्प लें कि हम जो भी बोलेंगे वो स्पष्ट, विनम्र और प्रेरणादायी होगा। ये स्वस्थ संवाद ही तो हमारी आने वाली बेहतर सभ्यता की नींव है। अगर हमारी बोलचाल स्वस्थ होगी तो हमारा समाज अपने आप ही सभ्य और सुंदर बनेगा।
1: चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और गाने की तरफ।

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साक्षी, तुमने अभी पिछले कुछ सालों में मौसम को नोटिस किया? कितना अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। हम यहाँ 45 डिग्री में

0: हीट वेव झेल रहे हैं, कुछ हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ा है, तो कई हिस्सों में अचानक बाढ़ की स्थिति बन जाती है।
1: हाँ ओजस्वी, बिल्कुल। कभी तेज गर्मी जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, कभी बारिश, या कभी ऐसे मौसम जो हमने सोचे भी ना हो। मौसम का मिजाज इतना तेजी से बदल रहा है ओजस्वी कि अब वेदर प्रेडिक्शन भी मुश्किल होती जा रही है।
0: और तुम जानती हो कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कि हम ये जो बदलाव देख रहे हैं ना, इसकी वजह हमसे हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में छिपी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दो बेहद ज़रूरी प्राकृतिक घटनाओं की, जिन्हें हम एल नीनो और ला नीना के नाम से जानते हैं।
1: दोस्तों, आप लोगों ने अल नीनो का नाम तो हाल ही में अखबारों में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि 2026 में इसका असर भारत के मौसम पर पड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत इसी से करते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो इसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है।
0: अब दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग ये सोचें कि भाई, प्रशांत महासागर का पानी अगर गर्म हुआ तो इसका हमारे देश के मौसम पर क्यों फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल सही सवाल है, पर आप भूल रहे हैं कि हमारी प्रकृति की यही खासियत है कि यहाँ सभी जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
1: और इसीलिए समुद्र का तापमान बदलने से हवाओं की दिशा, बादलों का बनना और रेन पैटर्न भी प्रभावित होते हैं, जिस वजह से भारत में मॉनसून कमज़ोर होगा, बारिश कम होगी और कई जगह सूखा पड़ने की भी नौबत आ सकती है।
0: यानी कि साक्षी, हमारे देश में खेती से लेकर कई आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होंगी।
1: सिर्फ हमारा देश ही नहीं ओजस्वी, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अगर इसी घटना का ठीक उल्टा कर दिया जाए तो उसे ला नीना कहते हैं।
0: यानी कि जब पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाए तो ला नीना का असर दिखाई देता है, मतलब सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना। वैसे कहा जा सकता है कि ये दोनों ही घटनाएं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जनरेट करती हैं, जिसका अलग अलग असर पूरी दुनिया पर ही दिखाई देता है।
1: तभी तो मौसम वैज्ञानिक इन दिनों घटनाओं पर लगातार नज़र रखते हैं। वैसे ओजस्वी, एक बात बताओ, ये जो वर्ड्स हैं अल नीनो और ला नीना, इनका मतलब क्या है?
0: साक्षी, इन दोनों वर्ड्स का मतलब, ये दोनों असल में तो स्पेनिश वर्ड्स हैं, जिनका मतलब है छोटा लड़का और छोटी लड़की।
1: अरे, इन शब्दों का मतलब इतना आसान, पर इनका इफेक्ट इतना सीरियस है ओजस्वी, है ना?
0: बिल्कुल, हम सभी पर इसका प्रभाव भी तो कितना ज़्यादा पड़ रहा है और आगे भी पड़ने वाला है, इसलिए इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है।
1: वो तो है ओजस्वी, पर अभी मौसम की जानकारी के बाद समय है गानों की बारिश का। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्यारे से गीत की तरफ।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेना के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ओजस्वी, एक बात तो बताओ।
1: क्या
0: क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद था?
1: स्कूल देखो उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था, पर हाँ आज ज़रूर लगता है कि स्कूल जाना, आराम से दोस्तों के साथ मज़े करना, खेलना कूदना, बस परफेक्ट लाइफ थी।
0: मतलब तुम्हें भी मेरी तरह स्कूल की इम्पोर्टेंस अब समझ आ रही है? नहीं अच्छा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमें जो चीज़ें इतनी आसानी से मिलती थी, जैसे स्कूल्स, फैसिलिटीज़, वो हर किसी को आसानी से नहीं मिलती है। ओजस्वी, आज भी दुनिया में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, साफ़ हवा, हेल्थ फैसिलिटीज़ एक प्रिविलेज से कम नहीं है।
1: हाँ साक्षी, हम 21वीं सदी में हैं और आज भी बेसिक फैसिलिटीज़ कई बच्चों के लिए बस एक सपना ही हैं, पर उनका ये सपना सच हो इसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिसमें यूनिसेफ सबसे ज़रूरी है।
0: दोस्तों, यूनिसेफ की स्थापना जो है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के रूप में ये शुरू हुआ था, क्योंकि तब इसका काम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त माँ और बच्चों को तत्काल राहत पहुँचाना था।
1: पर दोस्तों, समय के साथ साथ इसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता गया और इसका नाम भी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड हो गया, क्योंकि आज यूनिसेफ सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में ही नहीं बल्कि विश्व भर के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी काम करता है।
0: इसके साथ साथ ही यूनिसेफ जो है वो बच्चों में बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाने, आपात स्थिति में सामग्री पहुंचाने का भी काम करता है। एक और काम जो यूनिसेफ की जिम्मेदारी है वो है बाल संरक्षण। ये संस्था बच्चों को शोषण, हिंसा और बाल श्रम से बचाती है ताकि बच्चे अपने बचपन को बिना किसी डर के जी पाएं।
1: दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो कि दुनिया भर के बच्चों के लिए काम करती है, तो इसके साथ साथ कई देश की सरकारें, स्थानीय समुदाय भी मिलकर बच्चों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि बच्चे, जो कि हमारे और हर देश के भविष्य माने जाते हैं, किसी भी वजह से, किसी भी सुविधा से वंचित ना रहें, उन्हें बेहतर शिक्षा

0: सहायता मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सही माहौल मिले और हाँ सबसे ज़रूरी एक यादगार बचपन मिले।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य।
1: बिल्कुल ओजस्वी, अगर इसमें से एक का भी बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाए तो दूसरे पर असर पड़ता है। अब दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य की बात तो हम अक्सर करते ही हैं, पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बात को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि इससे जुड़ी परेशानियां हम देख नहीं पाते।
0: एकदम सही कहा, असल में हम लोग मेंटल हेल्थ का मतलब ही पूरी तरह से समझ नहीं पाते साक्षी, जिस वजह से इसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य या हमारी मेंटल हेल्थ का मतलब है हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने का तरीका, यानी कि हमारी इमोशनल वेलबींग। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हम स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम्स को खुद को बचा सकते हैं।
1: और अगर ये मेंटल हेल्थ ही फिट नहीं है तो हम चाहे फिजिकली कितने भी फिट हों, खुद को परेशान, थका हुआ, कमज़ोर ही महसूस करते हैं, जिसका असर ये होता है दोस्तों कि हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं, ना ही अपने काम को पूरे ध्यान से कर पाते हैं।
0: तो इसका मतलब तो ये है साक्षी कि हमें हमारे दिमाग और मन को भी पूरी तरह से देखभाल की ज़रूरत है।
1: ओजस्वी, सिर्फ देखभाल ही नहीं, अगर ज़रूरत लगे तो सही ट्रीटमेंट का भी। देखो, जैसे पैर पर चोट लगते ही हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, उसका सही इलाज करवाते हैं और पैर का हम अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, जो कि ज़रूरी है। वैसे ही मन के कमज़ोर पड़ने पर, थकने पर, उस पर ध्यान देना, सही मदद लेना और इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। या फिर बस कुछ समय के लिए मन को चिंताओं से आराम देना और रुक कर खुद को शांत कर लेना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है।
0: बिल्कुल सही बात है। हम सभी की लाइफ में देखे दोस्तों, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हमेशा ही बिना बुलाए मेहमान की तरह बैठी रहती है, जिसे हमें खुद ही निकलना भी पड़ता है। पर अक्सर ये प्रॉब्लम्स हमारे मन पर बुरा असर डाल देती हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ऐसी कई दिक्कतें आ सकती हैं। अब प्रॉब्लम से बच पाना तो दोस्तों नामुमकिन है, पर इनसे बचने के उपाय ज़रूर हैं।
1: जैसे कि अच्छा खाना, अच्छी नींद, इसके साथ ही साथ आप योग और प्राणायाम ज़रूर अपनाएं, जो कि आपके दिमाग को शांत और संतुलित करेगा। और सबसे ज़रूरी है लोगों से बातें करना।
0: सही कहा, अपने परिवार से, दोस्तों से या किसी भी भरोसेमंद इंसान से अपने मन की बात करना, उन्हें बताना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक अच्छा रखता है। अगर आप तनाव में हैं या अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों से बात करके या प्रोफेशनल हेल्प लेकर खुद को वापस फिट बना सकते हैं।
1: और हाँ ओजस्वी, अगर हमसे भी कोई अपनी मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो तो उसे भी हमें गंभीरता से समझना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: हाँ, ना कि बस छोटी मोटी बात बोलकर उसे टाल देना चाहिए। अब तो ओजस्वी, गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्पलाइन दी गई है, जिन पर आप काउंसलर से बात भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और याद है ना दोस्तों, हमने शुरुआत में ही कहा था, अगर मेंटल या फिजिकल हेल्थ में से एक का भी बैलेंस थोड़ा भी गड़बड़ा जाए तो दूसरे पर असर ज़रूर पड़ता है। कई बार डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता। तो दोस्तों, अपने तन और मन दोनों को ही स्वस्थ रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनिए ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, प्रकृति में हर जगह बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि ये हमारा युवाणी कार्यक्रम ही देख लीजिए, जहाँ जानकारियों और मनोरंजन का तालमेल है, वैसे ही हमारी अच्छी सेहत भी दो चीज़ों का बैलेंस है।

0: चलिए दोस्तों, अब समय है क्विज टाइम सेगमेंट के जवाब देने का।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क।
0: और हमारा दूसरा सवाल था, एल नीनो किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, इसका सही जवाब है स्पेनिश।
1: ओजस्वी, अब वक्त हो चुका है हमारे उन साथियों के लिए जो अपने करियर को लेकर सजग हैं। जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके पसंद के आने वाले रोजगार सूचना का।
0: आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की। हमारे जो भी साथी आईटी और कंप्यूटर क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये बेहतरीन अवसर है।
1: दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 23 जून तक रहेगी।
0: आप इसकी और जानकारी के लिए और शैक्षणिक योग्यता के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बात का सार यही था कि आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए,
1: नई नई जानकारियाँ लेते रहिए, अपने संवाद को सकारात्मक बनाइए और शाम 5:05 पर सुनना ना भूलिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। आज के लिए मैं आपकी दोस्त साक्षी
0: और अपनी दोस्त ओजस्वी को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

इस सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे, रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10 बजे। हमारे श्रोता लोक संगीत का रसास्वादन कर सकते हैं रात्रि 8:30 पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आज आप सुनेंगे मुंशी खां का सितार पर बजाया राग जय जयवंती। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें, संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत के अंतर्गत युगल गीत। फिल्म संगीत इस सभा में आप रात्रि 8 बजे, रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10 बजे भी सुन पाएंगे।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को है। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभराए। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई

0: अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। फिल्म संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं युगल गीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आवाज़ थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। कार्यक्रम में अगला युगल गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है संगम। स्वर मुकेश और लता मंगेशकर का है।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए फिल्म अनुराग के इस युगल गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4-लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक अवसर को देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को राष्ट्रीय यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग बताया है। इस उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी विकास योजनाओं और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बनाने के दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बैठक में शिरकत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री के सम्मान में आज एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि को 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास का प्रतीक बताया।
2: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी के राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन्हें पत्र लिखकर 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा कि श्री मोदी की नीतियों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण

0: को आधुनिक स्वरूप मिला है। इस उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में देवस्थान विभाग की ओर से विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई।
1: ओम तत्वाजानि ब्रह्मणा वंदमान सदा जाति यजमानो अविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बुद्धिर्षगं समान आयुः प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है।
2: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: इस उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर नारी चौपाल, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी रखे गए। प्रदेश भर से विभिन्न नेताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। प्रगतिशील किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लमोरिया ने भी राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को अनुकरणीय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री वैष्णव आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वे एमएनआईटी भी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज जयपुर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं जो राज्य के 94% क्षेत्र को कवर करते हैं। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। प्रसार भारती के चेयरमैन पद्मश्री प्रसून जोशी भी जयपुर पहुंच गए हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 168 मेगावाट क्षमता का ये केंद्र गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। ये दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक होगा, जहां उत्पादों और एआई क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4-लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। इससे करीब 1,359 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बीओटी मॉडल यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पर विकसित किया जाएगा। इससे नागौर और बीकानेर के बीच संपर्क बेहतर होगा, साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर

बढ़ेंगे तथा उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से उत्पादन इसी महीने शुरू होने के आसार हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकेंगे। मुख्य सचिव आज दिल्ली से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि HPCL रिफाइनरी के LPG और अन्य उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक यहां से 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल सालाना रिफाइन किया जा सकेगा। उन्होंने रिफाइनरी उत्पादनों की बिक्री संभावनाओं को तलाशने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए। जयपुर खो नागोरियान पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में थानाधिकारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने इस भीषण अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं पुलिस टीम ने इलाके में सर्च अभियान चलाते हुए अब तक 5 अवैध पटाखा फैक्ट्री गोदामों को सील किया है। हादसे के बाद इस क्षेत्र में की गई कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, मशीनें और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच FSL टीम मौके से नमूने इकट्ठे कर मामले की जांच कर रही है। राज्य में मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। अधिकतर हिस्सों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं दिल्ली और हरियाणा से सटे राज्य के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ धूल भरी आंधी चली। अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कई इलाकों में बारिश भी हुई। इस बीच श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी, फलौदी, बीकानेर और जैसलमेर में दिन के पारे में उछाल आने से लू का सबसे अधिक असर रहा। इन स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। राज्य में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से 14 जून तक तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसी दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। विभाग ने इन संभागों के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी। और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ोला ने तैयार किया है। जल संरक्षण से विकास तक प्रशासनिक सक्रियता और जनभागीदारी का एक अनूठा संगम बीते माह जिले में देखने को मिला। एक तरफ राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचा, तो दूसरी ओर जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े अभियानों में आमजन की भागीदारी भी बढ़ती नजर आई। इस दौरान मौसम ने भी कई रंग दिखाए। मई के अधिकांश दिनों में तेज गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया, लेकिन जून की शुरुआत में आंधी, बादल और हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कुल मिलाकर बीता महीना सलूम्बर में विकास कार्यों, धार्मिक आयोजनों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सक्रियता के नाम रहा। भीषण गर्मी के चलते

0: ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक पेयजल की समस्या कई जगह सामने आई। ऐसे समय में प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना रही। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने विभिन्न पेयजल योजनाओं, जलाशयों और हैंडपंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी गांव में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। इस बीच जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सबसे बड़ा और चर्चित अभियान बनकर उभरा। 25 मई से 5 जून तक चले इस अभियान के तहत जिले भर में जल चौपाल, श्रमदान, पौधरोपण, साइकिल रैली, जल स्रोतों की साफ सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरणी नदी, जैसमंद झील, कमल तलाई और विभिन्न गांवों की बावड़ियों और तालाबों पर सफाई अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन का प्रयास था कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम रहने के बजाय जन आंदोलन का रूप ले। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठन, विद्यार्थी, महिलाएं और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इन गतिविधियों में शामिल हुए। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां पूरे महीने चलती रहीं। जिले में संचालित 10 नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए गए। पंचायती राज विभाग को 6 लाख, शिक्षा विभाग को 4 लाख और वन विभाग को 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई और जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए। एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ लोकतंत्र के नाम जैसे अभियान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने और बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहले हुई। टीबी मुक्त भारत अभियान, एचपीवी वैक्सीनेशन, डेंगू जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग ने योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। वहीं जिले में अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन शटरडाउन की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान के तहत बिना पंजीकरण और बिना डिग्री संचालित क्लिनिकों, झोला छाप डॉक्टरों और अवैध जाँच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी संस्थानों में योगाभ्यास का सिलसिला चल रहा है। जैसमंद की पाल और सेरिंग तालाब पर नियमित योग किए जा रहे हैं। जिला कारागृह में बंदियों के लिए योग कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रशासन और आयुर्वेद विभाग का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुँचाना रहा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहा। जैसमंद की पाल स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी लोगों ने देखा। इसके अलावा विभिन्न गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, कथा, भजन संध्या और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी रही। ईद उल अजहा पर भी लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। सलूमर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माय प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माय शिरकत करण रो कार्यक्रम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ना 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी। और पचपदरा री तेल रिफाइनरियों इनी महीना उत्पादन शुरू है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। श्री नरेंद्र मोदी देश माए सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बन क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी ने ई सारू बधाई दीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए राष्ट्रपति इन्हें देश री जनता रा वारी अगुवाई माए अटूट भरोसा रो सबूत बतायो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वारा बधाई संदेश माए प्रधानमंत्री मोदी रा ई कार्यकाल

0: ने देश में बदलाव लावण वालों जमानो बतायो। ई मौके आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए री नई दिल्ली में खास मीटिंग राखी छी। मीटिंग में एनडीए गठबंधन रा सदस्य दला और भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता मौजूद रहा। ई दौरान देश रा विकास रा न्यारा न्यारा कार्यक्रम और बुनियादी योजनावा सागे। साल 2047 ताई देश ने विकसित बनावण रा नजरिया रो जायजो लियो छियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई मीटिंग में शामिल थिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ई प्रधानमंत्री मोदी रा मान में आज एक प्रस्ताव पास कर माना ई उपलब्धि सारू बधाई तीनी। मंत्रिमंडल री मीटिंग पाछे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में खबर नवीसा ने इन री जानकारी तीनी। वे प्रधानमंत्री री ई उपलब्धि ने देश री 140 करोड़ जनता रा भरोसा री निशानी बतायो।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई प्रधानमंत्री मोदी रा लाडला 12 साल रा बेहतरीन कामकाज सारू वाने कागज लेखर राज्य री 8 करोड़ जनता री ओर शुभकामनावां दीनी है। मुख्यमंत्री खत्माई मांड्यो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए प्रदेश ही विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प साचो करण ओड़ी बढ़ रियो है। ई मौके आज देवस्थान विभाग री ओर आखा राज्य माए खास पूजा अर्चना कर खुशहाली री कामना करी छी।
2: ओम तत्वाजानि ब्रह्मणा वंदमान सदा जाति यजमानो अविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युर्षगं समान आयुः प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पाली माए कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली एनडीए सरकार हर हलका और हर तबका रा भला सारू काम कीनो है।
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: ई मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में राखी छिया। देश परदेश न्यारा न्यारा नेतावां और संगठन नारी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने आ उपलब्धि हासिल करण पर बधाइयां और शुभकामनावां मिल रही है। प्रगतिशील किसान यूनियन रा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लामोरियाई देश सेवा सारू समर्पित प्रधानमंत्री मोदी रा व्यक्तित्व ने अनुकरणीय बतायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नई दिल्ली में नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग री सदारत करण रो कार्यक्रम है। राष्ट्रपति भवन में भेवण वाली ई मीटिंग रो खास मुद्दो 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास राखी जियो है। मीटिंग में उद्यमिता और कौशल विकास ने बधावो देवण और देश में काम धंधा रा स्थायी मौका मुहैया करावण रे बारा में विचार करियो जावेला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल जयपुर पधारण रो कार्यक्रम है। वे आकाशवाणी परिसरों जैसलमेर रा रामगढ़ माय 20 किलोवाट बूतारा एफएम ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करेला। ईसा गई प्रदेश माय एफएम ट्रांसमीटर री तादाद 39 हो जावेला। फिलहाल राज्य में आकाशवाणी रा 38 केंद्र है जो प्रदेश रा 94% हलका ताई पहुंचे है। श्री वैष्णव रो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो करण रो ही कार्यक्रम है। ई पाछे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए कृषि अनुसंधान केंद्र माए राख्या जावन वाला विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भेला। इरे जरिए देश माए लारला 12 साल माए भया ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनता रा भला रा कामारी जानकारी समाज रा हर तबका ताई पुगाई जावेला। केंद्रीय मंत्री प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए राखे जावन वाली प्रेस वार्ता नई संबोधित करेला। प्रसार भारती रा अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जयपुर पथार क्या है। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह

0: ప్రహరీ తయారీయాం రోజు ఐజో లేవన్సారు ఆకాశవాణి రా మహానిర్దేశక్ రాజీవ్ కుమార్ చయని ఆజ్ జయపూర్ పధార్యా. అమరికీ కంపెనీ మెటా గుజరాత్ రాజ్ జామ్నగర్ మాయ మారో పహలో ఏఐ సక్షమ డేటా సెంటర్ ఖోలన్ రో ఎలాన్ కిన్నో హై ఓ దునియా రా సబ్ బత్తి హల్చల్ వాళా డిజిటల్ బాజారా మాయ షామిల్ ఫైలా జఠ సామాన్ అర్ ఏఐ జుడియా బూతాన మజబూత్ బనావన్ సారు విశ్వ స్తర రో బునియాదీ ఢాంచో ముహయ్యా కరాయో చావెల్లా. ఏ సమాచార్ ఆప్ ఆకాశవాణి జయపూర్ అజ్మేర్ సున్ రియా హో. प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो है कि देश में CNG री कोई कमी नहीं है. वह कहो कि घर ताई पाइपलाइन जरिए ही रसोई गैस रिपूर्ति करी जा रही है. श्री पुरी कहो कि LPG कनेक्शन ने PNG कनेक्शन माय बदलन री कोशिश करी जा रही है. केंद्रीय मंत्री कहो कि कुछ लोग गलत जानकारियां देर दुनिया रा मौजूदा हालात रो फायदो उठावन री कोशिश कर रहा है.
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है. तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया. कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं. इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन.
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन रा काम ने मंजूरी दे दी नी है. इन्हें करीब 1,359 करोड़ रुपये बत्ता खर्चू बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल माथे विकसित करियो चावेला. इन्हू नागौर और बीकानेर बीचे जुड़ाव बेहतर वेला. बालोतरा जिला रा पचपदरारी राजस्थान रिफाइनरियों उत्पादन इन्हीं महीना शुरू होवन रा आसार है. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो कि इन्हू प्रदेश में निवेश नौकरी धंधा और आमदनी रा नुआ मौका बनेला. मुख्य सचिव आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम रा एहलकारा सागे वर्चुअल तरीकों राखी जी मीटिंग माय पोल रहा है. वह कहो के HPCL रिफाइनरी रा LPG और दूजा उत्पादन बत्ता बत्ता काम ले उनु ते करियो चावेला. मुख्य सचिव बतायो के 8 सालाना 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल री सफाई करी जा सकेला. जयपुर रा खो नागोरियान हलका माए पटाखा बनावन राय कारखाना माए काल लाई लागण हुई मौताना मामला माए एक ASI समेत 9 पुलिसवाला ने मुअत्तल कर दिया चिया है. पुलिस इन हलका माए जांच रो अभियान चलार गैर कानूनी तौर चल रही 5 पटाखा फैक्ट्रियां और गोदामा ने सील करती ना. हादसा पाछे इन हलकाओं मोटी तादाद माए बारूद मशीना और दूजी विस्फोटक सामग्री बरामद करी ची. FSL री टीम मौकाओं नमूना भेड़ा कैर मामला री जांच कर रही है. रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्यालय और अजमेर मंडल ने बेहतरीन काम सारू उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देर नवाजो है. अजमेर मंडल रा रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा बतायो कि मंडल ने डिजिटल पहल HRMS आदर्श एडॉप्शन डिप्लॉयमेंट और री इन्वेंटिंग ऑफ सर्विसेज रातेत रेल सेवा ने आधुनिक पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल बनावन सारू नवाजी चियो है. हनुमानगढ़ में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावा री परेशानियां आगीकरण सारू 12 जून ने पूर्व सैनिक समस्या समाधान शिविर लगायो चावेला. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बतायो कि शिविर में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावा री पेंशन स्वास्थ्य सेवा और दूजी सरकारी योजनावां जुड़ी समस्यावां मौके निपटावन री कोशिश करी जावेला. अरबे मौसम राज्यरा घनखर हलका माए जोरदार गर्मी पड़ रही है. श्रीगंगानगर चूरू पिलानी फलौदी बीकानेर और जैसलमेर माए 44-46 डिग्री सेल्सियस तापमान बीच लू रो घणो असर रह्यो. दूजगानी दिल्ली और हरियाणा लाग्योड़ा राज्य रा कुछ हलका माए बादला मनबासा गए आंधी चाली. अलवर हनुमानगढ़ झुंझुनू और भरतपुर रा कई हलका माए बारिश हुई. मौसम विभाग बीकानेर अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हलका माए कालो 14 जून ताई जोरदार बायरो बाजण सा गए कठे कठे बादला ने गाज और बीजने री चमक बीच बिरखा वेवन रा आसार चताया है.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून दीतवार ने विचार बतावेला आ इन कार्यक्रम रे 135वीं कड़ी भेला इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो नंबर ओजु सुन ले राव सा 1-800-117-800 नरेंद्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम जरिए ये विचार भेजा जा सके है आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवन वाला नेता बनिया ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माए प्रस्ताव पास कीनो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला न्यारा न्यारा कार्यक्रम माए शिरकत करेला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी और पचपदरा री तेल रिफाइनरियों इनी महीना उत्पादन स्वरूप है वन रा आसार इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं संध्या के 7 बजे हैं अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुरणिया सगला किसान बहन भाई ने आपी बन मुक्ता जैन
1: और संदीप पारिकरा घना घना राम राम। मुक्ता बहन देखो आजकल तो मौसम इससे हो रही है कि दिन का थोड़ सो जो कोई काम काज करना है नी तो लागे भी थोड़ो कर लिया यार बिंग पच्छे तो देखो दोपहरे पच्छे यार जब तैया सिंजा नहीं हुए नी कोई काम करने को मन ही कौन करे और यहाँ लागे कि भाई बस आश्रम में बैठे आराम आचा बस सुत्या रहा लेकिन सुत्या तो काम सर है कौन
0: काम सर है काम तो सगला तोड़ना ही पड़ सी चाहे सुन की सुई हुए
1: तो जब काम तोड़ना पड़े नी मुक्ता बहन तो बी टाइम आपा ने इन मौसम में थोड़ो ध्यान रखनो है और वो है कि आप अपना डील को ध्यान रखा भी इस मौसम में की है कि जरा सी भी गफलत बाजी जी की है नी भी गफलत सु की है कि आपन बीमार पड़ता देर कौन लागे कई बार क्या है कि काम करना घणो जरूरी है और इस तावड़े की लाए में जो काम कराने तो फिर थोड़ी सावचेती आपन रखनी चाहिए भी गाबा जका है वह सूती पैरा सिर पर कोई आपने या कोई पगड़ी बांध लिया या कोई गमछो है वो लपेट लिया या टोपी पहन लिया ताकि आपने गर्मी से बचाव रहे। कई बार क्या है कि आप काम कर वो करा मुक्ता बहन अरबिंग बच्चे क्या है कि अचानक या पसीना आना बंद हो जाए जी घबराने लग जाए सिर दुखने लग जाए चक्कर आने लग जाए तो इन प्रकार की कोई भी आपने जो दिक्कत महसूस हो तो तुरंत समझ जाना चाहिए भी आपने तो अब लू लग गई है।
0: सही क्यों है संदीप भाई देखो मौसम केड़ो भी हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चुनौतियां सागे ले रहा है। देखा कि गर्मी आवे तो अपन अनेक तरह की चुनौतियां सामना करना पड़े है। अपा तो कहीं है कि कई काम ऐसा हुआ है कि आप घरे बैठिया बैठिया कर सका लेकिन कई भाई जी का अपना बारे श्रमिक भाई है अपन किसान भाई है या अपन जी का मजदूर भाई है नी माने पूरे दिन तावड़े रे मायने काम करना पड़े और काम भी एड़ो करनो पड़े कि मेहनत रो जिका मैं मतलब आप रो शारीरिक काम कह सका अपा ने जिसको कहीं है कि बने स्वास्थ्य रो ध्यान रखनो घणो जरूरी होया करे।
1: और देखो काम ने तो आप छोड़ कौन सका तो काम करनो भी जरूरी है तो अपन ध्यान रखनो चाहिए कि एक तो पानी जो है नी
0: वो
1: अपन जरूर पीनो है पानी आप पीता रहा और जो सुविधा बैठे बात बने तो जैसे सिकंजी है छाछ है ना इन प्रकार की चीज जिके अपन लेना चाहिए और नमक और चीनी घोल जो है वो भी अपन लेना चाहिए क्योंकि जब आप तावड़े में काम करा जरूरी है काम करा जब

0: के है कि पसीनों निकले, पानी के शरीर में कमी हो जाए, तो भी कमी ने पूरी करने के लिए इन प्रकार की जो की चीज़ें हैं वे आपा ने निरंतर लेते रहना चाहिए।
1: और संदीप भाई देखो, आपा लोग भी जिसका काम करानी तो आपा ने कही है कि दिन में जिको काम हो नहीं भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है जदि निकलो नहीं, तो कहीं 12 से 4 बजे तक अगर आप अंदर रह सका नहीं घर रह मायने, तो आपा काफ़ी हद तक इन बीमारियाँ से बच सका हाँ। एर अपना जी का किसान भाई है, अपना जी का बाहर काम करना रहा भाई है नहीं, वह सगला ने आपा कई बार देखा हाँ कि पूर्ण रूप से पानी पी को उसके काम में लागूड़ा रहे, सोचे पहला निपटा ला काम ने, ये सुखा ही है कि बने पानी री शरीर में कमी हो जाया करे, और अभी बहुत खतरनाक हुए
0: बिल्कुल, और इन प्रकार की जी लापरवाही है पर बहुत महंगी साबित हो जाए। और एक चीज़ और है कि इन मौसम में खास तौर से जका टाबरिया है, बुजुर्ग है या फिर जका बीमार है, बन तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी में तावड़ा में आपा बारह नहीं, टाबरिया के बाहर तो छुट्टियां हैं तो
1: वह
0: खेलन लाग जाए, तो अब जी की लू है नहीं भाइया कौन देखे अभी कोई छोटो है या बड्डो है, तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखा, और जो मान लो कभी कोई इन प्रकार की दिक्कत भी हो जाए तो तुरंत नजदीकी चिकित्सालय जो को है या कोई आपने डिस्पेंसरी जो की है बैठे जाके आपने तुरंत डॉक्टरी सलाह और दवाई जो की है वह अपन लेनी चाहिए।
1: और जिकी गर्मी ज़्यादा पड़े नहीं तो इमें अनेक तरह और भी जिकी सावधानियाँ, अनेक तरह की बीमारियाँ भी है, अनेक तरह जिका क्या करे कि बच्चा कहीं है कि ध्यान ही कौन रखे, गली में खेलता रहे या आसे पासे घूमता रहे, या फिर गली में कहीं है कि खेलता खेलता आवे और घर में ठंडो ठंडो फ्रिज रो पानी पी ले, इसमें भी अनेक तरह की बने बीमारियाँ हो जाया करे, बने मौसमी बुखार हो जावे है या बन खांसी हो जाए या और जहाँ शरीर टूटन लाग जाए, तो अपन जरूरी है कि अपन टावरन घरे रखा, घर ही बने कोई खेल खिलौना है जिका घर ही करवावा, और अनेक तरह रे जिका गतिविधियाँ भी हुए नहीं संदीप भाई, गर्मी रे मौसम में बच्चा ने आपा घर छुट्टियाँ हैं तो बने अनेक तरह रा घर रही काम छोटा मोटा बन काम बुला दा या बन कोई घर रही कोई या कहाँ के भी ओ सीख लो या कोई खेल खेलना है तो खेल आपा बन सके,
0: कोई भानू बने टाबरा ने
1: घर में रखा,
0: दोपहर में आपा घर में रखा। और एक चीज और बतानी चाहिए, बारू जी कोई भी आवे नहीं तो आ एक आपा ने चीज गांठ बांध लेनी चाहिए कि घर में बारू जब भी घर आवा तो थोड़ी देर सारो पानी अब देखो पारू आता ही घड़े हुए जी पानी पी लिया नहीं ठंडो ठंडो तो फिर पानी लड़ जावे है, खांसी जुखाम जो की है हो जाएगा, तो इन चीज को ध्यान रखा। और एक चीज और है, हाँ तो घर में पानी पीने वाली बात होगी मुक्ता बहन, घरों बारे भी इन मौसम में थोड़ा पानी आपने देखभाल के पीना चाहिए, क्योंकि कई बार के है कि हेजो है पेचिश है
1: संक्रमित हो
0: जाए, इन प्रकार की समस्या जी की है ज्यादातर घरों बारे हुए जब आप अनदेखी करके पानी की और पानी आप पी लिया, और क्या करे कि देखो पानी जो अपन कठी टिस लाग रही है पानी नहीं मिल रहा तो चाय पी लियो, पर गंदो जो पानी है नहीं वो नहीं पीनो चाहिए। और घर में भी कोई मान लो अपन थोड़ा सो या कोई संको हुआ तो बिन निथार गे जिया फिटकड़ी
1: फिटकड़ी
0: है, बीसू हाँ। पानी ने थोड़ सो में फिटकड़ी गेर गे निथार गे फिर पानी पीनो चाहिए। और सो अच्छा तो और है देखो मुक्ता बहन, कदी भी आपने यहाँ लागे भी पानी में की गड़बड़ है तो पानी ने चौकी तरह उकाल गे ठंडो करके फिर
1: पीर पीणो, बहुत ही चौकी जानकारी संदीप भाई आपा ने किसान भाइयों ने दी, और तेज गर्मी रहे तेज लू रहे मायने सगला किसान भाई बातों रो ध्यान रखसी, पानी की बोतल सागे रखसी गमछो रखसी, और समय समय माथे जी की अपन खेतों में पेड़ लागूड़े नहीं बिंगे नीचे थोड़ी थोड़ी देर में जागे विश्राम भी करे, जिसू कही है कि भाई धूप सू वही गर्मी सू बच सके है और शारीरिक श्रम सू भी थोड़ो सो अगर ध्यान रखे तो चौकी बात। और संदीप भाई देखो अब आपा कार्यक्रम में आगे मीठो सो गीतड़लो सुना
0: सुनाओ

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो वो तो हो संदेश और संदेश पहला आप गीत सुनियो और मुक्ता बहन गाइडो किंग हो गीत
3: हो गीत गाइडो हो सीमा मिश्रा रो गाइडो हो
2: बहुत ही मीठो गीत हो। और अब देखो आगे जो को भगत आ रहे है नहीं मुक्ता बहन ये मैं आपा ना सावणी की फसल लेनी है और बी टाइम आपा जको भी अपना जगह खेती बाड़ी सो संबंधित जगह भी औजार है यंत्र है वे आपा ने सांगो पांग रखना चाहिए। और एक चीज और है आजकल जियां जियां विज्ञान तरक्की करी है और खेती बाड़ी में भी नया नया प्रयोग जका है वह हो रहा है और नया नया चीजें जकी है खेती बाड़ी का यंत्र जका है वह आ रहा है या जका पहलू है नी मुक्ता बहन बा में वो अंग्रेजी में कह के बाद मॉडिफाई
3: है
2: नया नया रूपांतरण जो है वो आयो है प्रयोग जो है और बेहतर हों तो जा रहे है। तो इन प्रकार जिया मान लो सी ड्रिल है या जीरो टिल सी ड्रिल है मतलब एक उन्नत यंत्र है जका में आप बिना जुताई गई सीधे बुआई जकी है बा कर सका। अब इन सु फायदों के जो को आपा जीरो टिल सी ड्रिल काम में लिया इन सु के एक तो आपनो भगत बच्चा है
3: भगत
2: और ईंधन की बचत हुए और आपनो जो को परीक्षा में नहीं पिंगी भी बचत हुए और सागे सागे इन ने काम में लेने सु माटी में नमी जिकी है बा बंचेड़ी रहे और जहां मान लो कई भाई लोग अपने साड़ी की फसल ले जो मान लो कोई जटे पानी की सुविधा है बट मान लो जब कणक या गेहूँ ले रहे हैं तो बट फसल की बुआई में इनको बहुत अच्छा उपयोग जो है वो होया करे।
3: और संदीप भाई जी का उन्नत यंत्र है नी ए कहीं है कि अपनी जी की देखो पहले तो अपनी बात आ करा कि जो का अपनो भारत है अपन देश है वो एक कृषि प्रधान देश है अठेरी जितनी भी अर्थव्यवस्था है नी कृषि रे माथे ही है और कृषि जद उन्नत हो सी जद अपना यंत्र सही हो सी और यंत्र की जी की अपनी सरकार है नी समय समय माथे अनेक तरह का यंत्र ले रही है और अपर अनेक तरह का अनुदान भी दे रही है किसान भाई लोग और जी का किसान भाई है वह अनेक तरह की चुनौतियाँ भी सामनो करें क्योंकि बंगा खने पहला जिया देखता कि आप सही तरह रा जी का कृषि यंत्र हा कोनी बुआई करण रो जी को साधन कोनी हो तो इन वास्ते कहीं बने अनेक तरह री परेशानियां होती अनेक तरह री चुनौतियां रो सामनो भी करनो पड़तो अधिक लागत होती कम श्रम ज़्यादा लागतो और मतलब बने कोई फायदों को मिलतो। तो अभी आप बता ही रहा कि बहुत तरह रा जी का यंत्र आया है जहाँ सीड ड्रिल की बात कर ली जीरो ड्रिल की बात और इन साथ साथ जहाँ फर्टिलाइजर कम शीट जी का ड्रिल है वह भी एक बहुत ही शानदार यंत्र है बहुत ही चोखा यंत्र है भी मैं कहीं है कि बीज है उर्वरक है दोनों डाल लीजिए और खाद और बीज रो जी को स्थान पर भाई उचित मात्रा में पानी जी की जमीन है नी भी ने मिले तो वो यंत्र बहुत ही चोखा पानी पोषण देवे है।
2: बिल्कुल बिल्कुल और इनी प्रकार एक प्लांटर है बिंगो भी इस्तेमाल जो को है मान लो आप मूंगफली की फसल ले रहे हैं या नरमो ले रहे हैं तो बियाल की फसल में की बुआई में भी प्लांटर जो का बहुत काम आ इमके कि बीज जो है बिल्कुल निश्चित दूरी पर पड़े जैसे सु पौधे की संख्या जो की है बस संतुलित रहे और संतुलित रहने से की है कि फसल की बढ़वार जो की है बा भी बहुत चौकी हो या करे।
3: तो आप बहुत ही आप चौकी सी बात बताइए अगर आप यंत्रारो उपयोग कर सा आपानी बुआई है खाद डालन में आधुनिक यंत्रारो तो आपानी फसल चौकी हो सी अपन मुनाफो चौको हो सी और जिका आपना किसान भाई है बे मतलब आगे बढ़ सी आप जिको आर्थिक स्तर है नी वो ऊंचो उठ सी और ही रह सागा पानी जी की सरकार तो साथ दे ही रही है। तो संदीप भाई कार्यक्रम में जानकारियां तो चलती रह सी आपना किसान भाई गीत री उड़ीक राख रहे हैं
2: तो उड़ीक देखिए पूरी करो
3: और तो सुना एक और मीठो सो गीतड़ लो।

0: जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: तो एतवार संदेश और संदेश पहले आप गीत संगीत हो जो को आनंद है बोलियो। और अब एक चीज़ है, देखो मुक्ता बहन, कि काम काज आप कोई भी करा, चाहे आप खेती बाड़ी से जुड़े रहा या दुकान करेड़ी है, गांव में मान लो दुकान भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो कोई भी काम काज को आप टोरेडो है बिंग माँ पीसे टके की दरकार जी की है बा होया करे। और किसान करने तो कई बार तो देखो ना चोख हो है, मालिक अच्छा दाना दे दे जब तो की पीसा हाथ में आ जाए, नहीं तो पचे फिर दिक्कत रहा। तो आज की समस्या है, इन समस्या ने देखता तका सरकार का न्यू एक योजना लाई गई जेके के माध्यम से थोड़ी बहुत आर्थिक मदद जी की है बा किसान भाई लोगा ने मिले, और जेके सु बे आप खेती बाड़ी संबंधी आवश्यकता जी की है बिना भी पूरी कर सके। आप कहो तो मैं बताऊं।
4: हाँ संदीप भाई, बहुत चौकी जानकारी लायो, अपने किसान भाई वैसे बहुत ही फायदेमंद है, तो आप जरूर बताओ।
3: तो इन योजना रो नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आज की योजना है, इन योजना के मार्फत जका भी किसान परिवार जुड़े नी मुक्ता बहन, तो बने हर साल 6,000 रुपया की सहायता जी की है बस सरकार का न्यू मिल जा करे। अब मन में वो सवाल आवे भी 6,000 तो अपन एक साल में साल पूरो यहाँ मिले नहीं सा, आ राशि जो की है बस 3 समान किस्ता में अपन मिला करे। अब 3 को मतलब हो गयो कि हर 4 महीने के अंतराल पर अपन मिला करे, मतलब 4-4 महीने से 2,000-2,000 रुपया जो है भाई किसान मिले। मिलने को तरीको जो कहे मतलब है वो भी ये भी मैं बिल्कुल पारदर्शिता है, कोई मान लो झोड़ा रही बात को नहीं, सीधे किसान गए बैंक के खाते में राशि जे की बा आ जाया करे। अब जब आ राशि आवे तो इनसु किसान जो को है वो आपको खेतों मान लो कोई बीज लेनो है, कोई खाद लेनी है या कोई कीटनाशक लेनो है या फिर कोई और खेती बाड़ी से संबंधित चीज लेनी है, तो बिना खरीदना बिना सहायता जी की बा मिल जा करे।
4: और संदीप भाई बहुत ही चौकी योजना, इस किसान बहुत फायदो मिलसी। इन योजना अंतर्गत एक और काम भी है कि किसान ने पंजीकरण कराना आवश्यक होया करे है, और पंजीकरण के दौरान भी ने भाई कई तरह की चीज आवश्यकता होया करे, जी आधार संख्या है, बैंक रो खाते रो विवरण है, भूमि संबंधी कोई जानकारी है, तो वह सगली जानकारियां लेर भी ने दर्ज करानी है। और सरकार जी का लाभार्थी हुए है बने जो पहला बने कही है कि सत्यार्थ कर ले कि भाई वो सही है और बिना बिंगे खाते में सीधा रुपया भेज देवे। ये योजना में पारदर्शिता रो बहुत ही चोखो ध्यान रखियो गयो है और आप को जी को KYC री व्यवस्था भी में करी गई है।
3: बिल्कुल, और इसको देखो फायदो एक वो है भी आपन गांव में किंग आगे हाथ फैलाने की जरूरत को नहीं, कोई साहूकार कान जावा किंग करने जावा तो बिन प्रकार की समस्या को नहीं, एकदम आपना खाता में सीधा पैसा जका है बस सरकार का नहीं सुझा जाए। तो दरकार इन चीज री है कि आप जागरूक हुआ और इन प्रकार जकी भी योजना हाँ, है बाकी जानकारी जकी है बारा का। अब जी मान लो आपने सरपंच जी है, पटवारी जी है, तो बांसु मिल गए इन प्रकार की जानकारी ले गए आप जकी भी किसान के हित में योजना में जकी है बांसु आप

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां।

0: जुड़ सका।
1: तो इन जानकारी रो किसान जिका ने ध्यान पड़े वह भी इंगोई फायदो ले सी, और आपका जिका भी किसान भाई है सगला ने इनो फायदो बता सी जिका ने ध्यान कोनी। और आप प्रधानमंत्री जी की सम्मान निधि योजना है बा किसान रे बहुत ही लाभकारी है, प्रभावी है, आय रो सहारो बने हैं और किसान रो जीवन समृद्ध हुए। तो संदीप भाई जानकारी बहुत चौकी, और किसान भाई ने अगलो गीतड़ो सुनावा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ सा।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय

0: से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फुटो से गीतर लो सुनो, संदेशा सुनो, और देखो जाने रो तो मन को नहीं करे, पर वक्त तो हो रहा है।

0: के अनुसार अपन आपनो काम भी करनो पड़सी और प्रोग्राम को भी समापन करना।
1: बिल्कुल, तो अब कार्यक्रम सो सीख दी रहो आप रहताड़ू संदीप पारिकर,
0: आप रिबेन मुक्ता जैन ने घणा घणा
1: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं इंद्रजीत छंगाणी के स्वर में उनकी ये प्रस्तुति।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। ये जी आप सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत किस कार्यक्रम में, आइए सबसे पहले सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

यह आवाज थी सुमन कल्याणपुर की। फिल्म का नाम था बात एक रात की। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। स्वर किशोर कुमार का है, फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक

0: गलती हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
1: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
0: हाँ मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या।
1: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
0: मेरे बारे में?
1: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती हैं।

अभी आपने ये गीत सुना। गीत को स्वर दिया था लता मंगेशकर ने। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

इस समय रात्रि के 8:30 होने को हैं। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं ममता सिंह से ये लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही

0: समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जाए।

0: आ सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5-7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक

0: to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए छाया गांगुली की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है गमन।

0: हेमंत कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा।
1: चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
4: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12

0: वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बी फिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे, हमने यहाँ आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से, जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो

0: आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है। साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है। उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर आप देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने

0: इनसे कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया, उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे, और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज
1: जी
0: जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की। अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे हैं, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे

0: ये बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई भी बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारे यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ, क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको

0: प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे। लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदल कर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भारत ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है, आनंद जी मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है दुलारी।

यह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम था दुलारी। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत, संगीत शंकर जयकिशन का है और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

यह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम था गज़ल। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा है संतोष आनंद ने, आवाज़ें लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की हैं।

यह आवाज थी मुकेश की, फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए मुंशी खां का सितार पर बजाया राग जय जयवंती।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि

0: न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिंचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right." Bharat ke lo-